FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए विचार बिंदु व सुनिए पुस्तकें विषय पर विचार।
3: पुस्तक कागज की सूखी निष्प्राण निष्पंद निर्जीव वस्तु ही नहीं है, वरन पुस्तक जीते जागते जीवन की हलचल है। पुस्तकों के शब्द शब्द में अनुभव की अमरता है, जीवन पथ की कठिनाइयों के हल है, तरु की शीतलता है, अमर विश्वास और महकते प्राण हैं। हृदय के सुरभित सुमन खिले हुए हैं और धरती को स्वर्ग बनाने वाले स्वर्ण सूच हैं एवं उल्लास की रजत रश्मियां छिटक रही हैं। पुस्तकों की दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं महापुरुष हैं। संसार के बड़े बड़े विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं। वे हमारी सहायता के लिए प्रति पल तैयार हैं। वे दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते। हम जब चाहें जहां चाहें पुस्तकों में बैठे हुए अपने उन गुरुओं और महात्माओं को ले जा सकते हैं। पुस्तक के पृष्ठों में एक सदा सजा रहने वाला जीवित संसार है। इस मरणशील दुनिया में ये हाड़ मांस का नश्वर शरीर कब नष्ट हो जाए, पर जो अनुभव पुस्तकों में लिखे हैं दीर्घ काल तक अक्षय रहने वाले हैं। पुस्तकों में दुनिया की सब समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। मानव जीवन और समाज के निगूढ़तम रहस्यों की निचोड़ भरी है। सच मानिए, जो ज्ञान आप 50 वर्ष जीवित रहकर प्राप्त करते हैं वो पुस्तकों, समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ज्ञान आपको 50 वर्षों के लंबे जीवन के बाद प्राप्त होता है वो अच्छी पुस्तकों के द्वारा आपको जीवन के आरंभ में ही या जब आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। जिस घर में पुस्तकों का निवास है उसमें अनेक विद्वानों, विचारकों तथा महात्माओं का निवास है। यानी घर में ज्ञान का भंडार

0: ऋषि तिरुवल्लुवर के शब्दों में विद्वान पुरुष सुगंधित पुष्पों के समान हैं। वे जहां जाते हैं अपने साथ मधुर सुगंध का आनंद ले जाते हैं। इसी प्रकार विद्वान पुरुषों की पुस्तकें जहां हैं वहां ज्ञान की सुगंध का भंडार है। पुस्तकों द्वारा अर्जित संस्कारित बुद्धि आगामी जन्मों में क्रमशः उन्नति ही करती जाती है और जीवन उच्चतम बनते हुए पूर्णता तक पहुंच जाता है। कुएं को जितना खोदा जाए उसमें से उतना ही अधिक जल प्राप्त होता जाता है। इसी प्रकार जितना स्वाध्याय पठन पाठन लेखन इत्यादि किया जाए मनुष्य उतना ही ज्ञानवान बनता जाता है। मनुष्य क्या है, विश्व क्या है, ईश्वर आत्मा और जीव क्या है, मनुष्य जीवन के बाद क्या होता है, सर्वोत्तम जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है, इन्हें वे ही जान सकते हैं जिन्होंने बड़े बड़े विचारकों के ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया है, विद्या पढ़ी है। ज्ञान तो जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाली दिव्य संपत्ति है। आपका मित्र संभव है आपका साथ छोड़कर चला जाए, किंतु पुस्तक रूपी सत्संग सदा सर्वदा आपके लिए खुला हुआ है। यदि स्वाध्याय द्वारा प्राप्त उपयोगी ज्ञान को जीवन में उतारा जाए तो जीवन की अनेक मूर्खताओं से सहज ही बचा जा सकता है। पुस्तकों में संचित विचारों ने संसार में बड़ी बड़ी क्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं। उन्हें निष्प्राण समझना बड़ी भारी भूल है। उनमें महती शक्ति भरी हुई है। वे उतनी ही स्फूर्तिमान होती हैं जितने उनके लेखक। जिस प्रकार एक शीशी में कोई अतीब गुणकारी औषधि जीवन में उपयोग करने के लिए संभाल कर रखी जाती है, उसी प्रकार एक अच्छी पुस्तक में एक महान आत्मा के जीवन का सार तत्व भरा होता है। उसी की जिंदगी के निचोड़ से अधिक लाभ उठा सकते हैं। कभी मिल्टन के शब्द स्मरणीय हैं, एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान आत्मा की बहुमूल्य रक्त की बूंदों की तरह है, जो शाश्वत उपयोग की वस्तु है, पथ निर्देशक है। उसमें जीवन का सर्वोत्तम रस अनुभवों का निचोड़ भावी पीढ़ी के लिए मौजूद रहता है। ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। इस जीवन के अनुभव हम दूसरे नए जीवन में काम में नहीं ला सकते। पता नहीं अगले जन्म में हमें ये सुदुर्लभ जीवन प्राप्त हो या ना हो। इसलिए स्वयं अपने अनुभवों के पकने की प्रतीक्षा किए बिना हमें पुस्तकों के स्वाध्याय द्वारा अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
1: विचार बिंदु में अभी अपने पुस्तकें विषय पर विचार सुने और आइए अब आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हे ईश, तुम सुबह की पहली आराधना हो तो रात्रि की अंतिम प्रार्थना हो। जीवन की तुम ही आस हो, मजबूत विश्वास हो। भक्ति, प्रेम, साधना सभी कुछ तो तुम ही हो।

आराधना के आरंभ में आपने शर्मा बंधु की गाई ये कृष्ण भक्ति रचना सुनी और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक राम भजन। स्वर है पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर का। कण कण में राम, जन जन में राम, हर प्राण में राम। मर्यादा की दीप जली जब राम धारा पर आए। राम केवल नाम नहीं आदर्शों की धारा है। करुणा, न्याय और सद्गुण के उज्ज्वल सितारा है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए अब सुनते हैं एक माँ का भजन, स्वर है शर्मा बंधु का। नित चरणों में रहे श्रद्धा भाव, वरदो भक्ति मेरी अनन्य हो, मातेश्वरी तू धन्य हो। अज जग में सर्वत्र माँ में सुचि पाओं की धूल रहूं, सुवासित हो माता जीवन बनकर मैं ऐसा सुगंध रहूं। तेरी कृपा का हाथ रहे मैं ऐसा सदा भक्त रहूं।

अगली भक्ति रचना हरिओम शरण के स्वर में। मन सरल भाव रहे, सद्गुणों का ध्यान रहे, मदद को

अगली भक्ति रचना हरिओम शरण के स्वर में। मन सरल भाव रहे, सद्गुणों का ध्यान रहे, मदद को सदा हाथ बढ़े, मित्रवत व्यवहार रहे, कलुषित ना विचार रहे, जीवन ये साकार रहे, ऐसा मुझको वर दो प्रभु, तेरे ही चरणों में शीश रहे।

अनादितु अनंततु सत्यतु ओंकारतु धर्मतु ज्ञानतु संतों का मानतु। हाथ में त्रिशूल धर, जटा में गंगधारी, मस्तक में सोही चंद्र, जय हो त्रिपुरारी। आइए आराधना का समापन करते हैं शिव भजन से। इस भजन को स्वर दिया है विनोद राठौर ने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए अब करते हैं आज की बात। आज की बात के साथ मैं माधुरी केड़ा, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज है 20 जून। चलिए जानते हैं क्या कुछ दर्ज है इतिहास के पन्नों पर आज की तारीख में। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट टेनिस प्रिजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा की गई। 20 जून की तारीख 1789 में फ्रांस की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट शपथ की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को इस रैकेट खेल से जोड़ना, खेल में भागीदारी बढ़ाना और नए खिलाड़ियों को प्रेरित करना है। इस दिन दुनिया भर के टेनिस क्लब, स्कूल और विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट, प्रदर्शन मैच और कोचिंग क्लिनिक आयोजित करते हैं। दोस्तों, राजनेता पारस चंद्र जैन का जन्म 20 जून 1950 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। 2005 से 2013 तक वो वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहित विभिन्न विभागों के लिए मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। सन 2022 से भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य में हुआ। वो किसी आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति और प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। वो इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं। श्रोताओं, इससे पहले उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जो उस राज्य के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली राज्यपाल हैं। उन्होंने 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 1979 से 1983 तक राज्य सिंचाई और विद्युत विभाग में क्लर्क के रूप में और फिर 1994 से 1997 तक रायरंगपुर में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। बहुआयामी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री, निर्माता, नृत्यांगना और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना, बिहार में हुआ। उन्होंने बॉलीवुड में 2005 में फिल्म गरम मसाला से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ और ग्रीक फिल्मों में भी अभिनय किया। वे टाइकांडो में 4th Dan ब्लैक बेल्ट रखती हैं और एक प्रशिक्षित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी भी हैं। नीतू चंद्रा ने मिथिला मखान जैसी मिथिला फिल्म का निर्माण किया, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वे दूरदर्शन की कार्यक्रम रंगोली की प्रस्तुता भी रह चुके हैं। अभिनय के अलावा वे समाज

सेवा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी हमेशा सक्रिय रहती हैं। ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। जानकारियों की विविध रंगों में से एक रंग के साथ हाजिर हूँ मैं माधुरी कैड़ा। सभी दोस्तों को मेरा स्नेहिल अभिवादन। दोस्तों, जो भी इस दुनिया में आया है उसे सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। हर का प्रयास रहता है कि वो कहीं ना कहीं अपना आशियाना बनाए, ताकि भोर के बाद जब सांझ हो तो उसके कदम सुकून की चाहत में अपने घर की तरफ बढ़ें। किंतु कई बार विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को बेघर कर देती हैं, अन्यत्र संरक्षण लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन हालातों में भी वो सम्मानजनक जीवन जी सके, इसी उद्देश्य को लेकर 20 जून 2001 से हर वर्ष हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे प्रस्तावित किया 4 दिसंबर 2000 को। इस दिन संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के साहस और सहनशीलता के प्रति संवेदनशील होकर उनकी स्थिति को समझते हुए समाज को जागरूक करना हम सबका फर्ज है। दुनिया के कई देशों में देखा गया है कि लोग किसी प्रकार की आपदा, बाढ़, किसी महामारी के फैलने, युद्ध के कारण या हिंसा फैलने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में शरण लेते हैं। बहुत जरूरी है कि इन परिस्थितियों में उन्हें गरिमापूर्ण व्यवहार मिले, सुरक्षित माहौल और घर मिले, उन तक आवश्यक सेवाएं, खासकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें, उनके देशों के हालात सामान्य होने तक उन्हें काम मिले, अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के अवसर मिले। विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम है जब तक सभी सुरक्षित न हों। ये विषय सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में उजागर करता है दोस्तों, और इस बात पर जोर देता है कि किसी भी समुदाय को तब तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता जब तक कि विस्थापित लोगों को सम्मान और सुरक्षा न मिले। इस वर्ष यानी कि 2026 में शरणार्थी सप्ताह 15 जून से 31 जून तक मनाया जा रहा है, जिससे शिक्षा, वकालत, स्वयंसेवा, धन जुटाने और सामुदायिक भागीदारी के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। शरणार्थी सप्ताह 2026 ने साहस विषय को अपनाया है, जो विस्थापन के बाद अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे लोगों के लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और रोजमर्रा की बहादुरी को उजागर करता है। विश्व शरणार्थी दिवस हमें याद दिलाता है कि एकजुटता केवल जागरूकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये उन लोगों और संगठनों का समर्थन करने के बारे में भी है जो शरणार्थियों को सुरक्षा, स्थिरता, अपनापन और भविष्य की आशा प्रदान करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज की विविधा में बस इतना ही। अगली बार एक नए रंग के साथ आपके बीच होंगी। अभी दीजिए माधुरी को अनुमति। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने

0: जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जन कल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ही अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अपराहन 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर सजीव प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे और 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमती जी हजारिका और सुंगवादन नर्जरी से भेंटवार्ता आप सुन सकते हैं। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विवेक कर्मेह का ठुमरी और दादरा गायन आप सुनेंगे। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, 6:30 पर, गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार 6:50 पर, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार के प्रसारण का समय रहेगा 7:30। ये समाचार हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से 130वां प्रसंग। प्रातः 7:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विशेष कार्यक्रम मन को ठीक करना और विश्व को जोड़ना विषय पर योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी से संजय जोशी की भेंटवार्ता। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 8:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित। महिलाएं अपना कार्यक्रम ऐप पर सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे फिटनेस का नहीं कोई विकल्प और नमो ड्रोन दीदी योजना सरकार के बारह वर्ष। दोपहर 1:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक जानमाज और किसान भाई खेती की बातें सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह भिंडा की जानकारी पर्वतीय क्षेत्रों में मडवा एवं झुंगरा की वैज्ञानिक खेती। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विश्व रिफ्यूजी दिवस और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से युवाओं को लाभ। 5:45 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे विश्व शरणार्थी दिवस, क्षेत्र संकलित जानकारी आपको सुनवाएंगे जीवन शैली से उपजी बीमारियों का योग से उपचार विषय पर। और किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आपसे बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में मोटे अनाज का उत्पादन विषय पर, साथ ही जानकारी देंगे खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन।

आज की सलाह के अंतर्गत कृषि में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, सरकार के 12 वर्ष और पशुओं में टीकाकरण क्यों जरूरी विषय पर कमल दुर्गापाल से भेंटवार्ता आप सुन सकते हैं। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर। शहस्वर कार्यक्रम में 5:05 पर हमारे आज के गायक कलाकार होंगे भूपेंद्र भौरियाल और उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं 2:02। मिले जुले गीतों और गजलों के कार्यक्रम सब रंग का आनंद लीजिएगा प्रातः 10:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में 1:15 पर सबरस कार्यक्रम के तहत रात्रि 8:00। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। 10:35 पर होगा कार्यक्रम सुरबहार। इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीतकार इब्राहिम अश्क के लिखे फिल्मी गीत। अपनी पसंद के चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ हाजिर होंगे कार्यक्रम का मेरी पसंद। समय रहेगा 12:00। 2:45 पर सुनिएगा एक ही फनकार सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनते हैं अपराह्न 3:00। सायं 7:40 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम है। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से 130वां प्रसंग।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

ये था श्री रामचरितमानस 130वां प्रसंग। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य में लगभग 6000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियुक्तों को 24 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए 289 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल शहर में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और मॉनसून के दौरान राहत व बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए सभी जिलों में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन से तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में लगभग 6000 कर्मचारियों और 900 से

0: अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड सरकार युवाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री धामी ने युवाओं से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं, पेयजल परियोजनाओं, यातायात सुधार, आपदा प्रबंधन और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के लिए 75 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त, देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार और प्रमुख चौराहों के आधुनिकीकरण के लिए 33 करोड़ 45 लाख रुपये तथा सहसपुर और शंकरपुर हुकूमतपुर पेयजल योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित पिथौरागढ़ जिले के 78 परिवारों के पुनर्वास के लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपये तथा वन्य जीव जनित क्षति के मामले के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक सहायतित यू प्रिपेयर परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है। वहीं खटीमा, चंपावत, हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: श्रीनगर गढ़वाल शहर में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहर में बिजली के खंभों पर झूलते तारों से लोगों को राहत मिलेगी और शहर के सौंदर्यकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रीनगर में विद्युत समस्याओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में डॉक्टर रावत ने शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी भवनों, विद्यालयों और अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। बैठक में उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के उफरैंख हाल में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की जानकारी देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के बड़े हिस्से में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को विभिन्न गांवों में जर्जर विद्युत पोलों को बदलने, आवश्यकता के अनुसार पोलों की शिफ्टिंग करने, पुराने ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए। मॉनसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए राज्य के सभी जिलों में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में प्रदेश भर के करीब 70 स्थानों पर एक साथ अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में ओरिएंटेशन एवं समन्वयक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनपदों को मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इस बार मॉक ड्रिल केवल नए स्थानों पर आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल से पहले 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपदों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता, उनकी तैनाती और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मॉक ड्रिल घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। अभ्यास के दौरान राहत शिविरों की स्थापना, बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्थाओं को वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा। साथ ही सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सैनिकों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों और NCC, NSS और रेड क्रॉस के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मॉक ड्रिल में जलभराव, भूस्खलन, स्कूलों से बच्चों की सुरक्षित निकासी, कटे हुए क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने, जल विद्युत परियोजनाओं से पानी छोड़े जाने पर अलर्ट जारी करने तथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से फंसे लोगों के रेस्क्यू जैसे विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित राज्य की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना की DPR को स्वीकृति देने तथा इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल कर इसकी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना की DPR को भी शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया गया। बैठक में हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना पर भी चर्चा हुई। रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि हरिद्वार मोतीचूर रेल लाइन दोहरीकरण को स्वीकृति मिल चुकी है और यह कार्य दो चरणों में

0: पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मेरठ ऋषिकेश RRTS कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा हुई। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक प्रस्तावित 78 किलोमीटर लंबे संरेखण की DPR तैयार किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य के सभी लगभग 6,000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए 289 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल शहर में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और मॉनसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए सभी जिलों में 2 जुलाई तक राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। हमारे आज के गायक कलाकार हैं भूपेंद्र भौरियाल।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।

0: भूपेंद्र भौरियाल के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब हम आपको सुना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विशेष कार्यक्रम मन को ठीक करना और विश्व को जोड़ना विषय पर योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी से संजय जोशी की भेंटवार्ता।
1: मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी और इनसे हम योग दिवस के संबंध में बातचीत करेंगे। तो अधिकारी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: योग से स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस वर्ष के जो प्रोग्राम आप लोग आयोजित करने जा रहे थे, ये कहाँ पर होंगे?
3: योग का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो भव्य आयोजन होना जा रहा है वो अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मैदान शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का जो ऐतिहासिक मैदान है सिवगिनी खेल मैदान, वहाँ पर इस बार भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
2: यूँ तो पूरे देश में मनाया जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार में विशेष आयोजन इसका होगा और प्रधानमंत्री हमारे कलकत्ता में इसमें प्रतिभाग करेंगे प्रातःकालीन उसमें। तो मैं जानना चाहता कि योग का क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए?
3: योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि योग जीवन जीने की कला है
2: जी।
3: और जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, योग केवल शारीरिक रोगों को ही नहीं अपितु शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक रोगों को दूर कर साधक का सर्वांगीण विकास करता है।
2: जी जी, तो आप जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं हम, तो आजकल के उसमें हम जाकर मॉडर्न लाइफ स्टाइल हमारी है, तो यूँ तो यूट्यूब और इसके माध्यम से कई तरह के योगाचार्य हैं मैं कहूँगा, लेकिन असली योग क्या है?
3: असली योग की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कह रखा है कि अर्थ योगा अनुशासनम, अर्थात अब मैं अपने योग सूत्र का अनुशासन पूर्वक प्रारंभ करता हूँ। तो सर्वप्रथम योग अनुशासन से प्रारंभ होगा। योग की सीधे आसन प्राणायाम मुद्रा इन श्रेणियों को सीधे चौथी या पांचवी श्रेणी पर जाकर योग साधना करते हैं जिसके रिजल्ट उतने नहीं मिल पाते। अगर हम अनुशासन पूर्वक योग की प्रत्येक श्रेणी को अपने जीवन में प्रयोग करें, निश्चित तौर पर योग साधक का सर्वांगीण विकास होगा। जैसे कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, सबसे पहले हमें यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब जाकर आप समाधि को प्राप्त करोगे, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे।
2: जी, मैं ये कहूंगा कि हमारे कई युवा इस बारे में नहीं जानते कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, थोड़ा सा इसको विस्तार इस पे दें।
3: जी गुरु जी, अगर मैं यम की बात करूँ, यम को योग साधन में महाव्रत कहा गया था, सबसे बड़ा व्रत यम है। यम पांच प्रकार के बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा की जब बात करते हैं तो अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से, कर्म से किसी भी जीव प्राणी आदि को किसी भी प्रकार का दुख न पहुंचाना अहिंसा है। इसी प्रकार सत्य की बात करें, मनसा वाचा अर्थात मन, वचन, कर्म

0: किसी भी जो भी चीज में जैसा देखा जैसा सुना उसको उसी प्रकार व्यक्त कर देना सत्य है, एंड फिर सत्य यथा चोरी न करना। अगर मुझे लगता है कि किसी की कोई चीज में पसंद आ गई तो मेरे अंदर चोरी का भाव भी ना आए, ना मन सा आए, ना वचन सा आए, ना कर्म
1: जी
0: सा आए,
1: जी
0: तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात मैं अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करूं, अर्थात मैं अपनी विधि की रक्षा करूं,
1: जी
0: अर्थात मेरे अगर कोई अपोजिट लिंग मेरे सामने है तो मेरे उसके प्रति बिल्कुल 1% भी मेरे अंदर गलत विचार ना आए,
1: जी जी
0: तभी हम ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात जितना मेरे पास है उतने में संतुष्ट रहना और आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना।
1: जी हेलो
0: हाँ, ये हमारा अपरिग्रह है कि
1: जी।
0: आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना।
1: योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अब बात आती है हमारे जो युवा हैं वो इसको किस तरह लें। मतलब जरूरी भी है कि लाइफ, अगर आपको जिंदगी जीनी है तो कुछ ना कुछ आपको अपने पास रखना भी पड़ेगा।
0: जहाँ हम बात करें हमारे युवा इससे कैसे प्रभावित हो, युवा कैसे योग की ओर आ रहा है, तो जिस प्रकार कहा गया है कि परिवार किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला है,
1: जी
0: आज से अगर मैं 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो एक परिवार में संस्कार होते थे,
1: जी
0: आज वो संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। और यहाँ तक कि बुजुर्ग माता पिता भी आधुनिक भौतिकवाद में इतने रम चुके हैं, उन्हें पता नहीं कि मेरा बच्चा किस ओर जा रहा है। बच्चा संस्कारी होगा और माता पिता योग साधना में की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसका बालक खुद ही आगे बढ़ने लगेगा। हर स्तर पर योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट स्तर पर योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी रूप में वर्तमान जो जनता बहुत ज्यादा अन्य रोगों से पीड़ित हो चुकी है, किसी न किसी रूप में योग को अपने जीवन में उतार कर इन सभी बीमारियों से उसको निजात मिल सके।
1: जी आदमी की उम्र बढ़ती है तो वो अपने को स्वस्थ कैसे रह गए इन प्राणायाम या योग के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ रख सकता है।
0: बात करें अगर कोई बचपन से ही योग करता रह रहा है तो वो तो 60-65 की उम्र में भी अपने को स्वस्थ फील करेगा। अगर
1: जी
0: कोई साधक 60 की उम्र में योग प्रारंभ करना चाह रहा है और उसे अनेक प्रकार की समस्या, निश्चित तौर पर उसे एक अच्छे योग प्रशिक्षक की देखरेख में योगाभ्यास करना चाहिए।
1: जी
0: उसे शुरुआत में सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे उसे फिर सूक्ष्म व्यायाम से बृहद आसनों की ओर जाना चाहिए, नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने हैं, कौन से प्राणायाम नहीं करने उसके लिए एक अच्छे योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, या फिर किसी अच्छे योग के तत्व का यूज देखकर भी आजकल आप देख सकते हैं किस बीमारी में क्या करना चाहिए, उन्हीं आसन प्राणायाम या योग की मुद्राओं का करना चाहिए।
1: कितने घंटे आप योग कर सकते हैं और कितने बजे योग करना उचित रहेगा। मैं बढ़ती उम्र के लोगों के साथ बात करूंगा।
0: साधक को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास करना चाहिए।
1: जी
0: अगर साधक ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास करें तो निश्चित तौर पर उसका पूरा दिन का रूटीन अच्छा रहेगा, धीरे धीरे साधक इससे बहुत आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर किसी साधक सुबह उठने में उसको किसी भी प्रकार की समस्या है तो खाना खाने के 3 या 3.5 घंटे के बाद किसी भी समय, जो भी समय आप, क्योंकि आजकल का भौतिकवाद इतना है कि आदमी अपने आप को समय नहीं,
1: जी
0: तो इसलिए जिस समय उससे मिले समय मिले कम से कम खाने का 3 से 3.5 घंटे का गैप हो, और निश्चित तौर पर अगर वो 3 से 3.5 घंटे के गैप के हिसाब से योगाभ्यास करे तो निश्चित तौर पर अनेक प्रकार के रोगों से निजात पाएगा और अपने जीवन को प्रसन्नचित्त जीवन यापन कर पाएगा।
1: जी हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग जो देर से योग करते हैं, मैं बढ़ती उम्र के बाद करते हैं, 50, 55 या 60 साल के बाद बॉडी काफी स्टिफ रहती है, तो बहुत से आसन शायद वो ना कर पाए, और अगर वो करने का प्रयास भी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इंजुरी भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे आप कि ऐसे लोगों को किस तरह के व्यायाम करने चाहिए प्रतिदिन।
0: बढ़ती उम्र के साधकों के लिए सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है ज्वाइंट पेन की समस्या रहती है, जो शरीर के हमारे अनेक प्रकार के जो ज्वाइंट है, जो संधि है,
1: जी
0: उन संधियों में इंजरी होने की सबसे ज्यादा समस्या रहती है। तो ऐसे में एक साधक को बड़े आसनों का अभ्यास न कर सूक्ष्म आसनों का अभ्यास करने, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जैसे कि सबसे पहले उंगलियों को खोलना बंद करना, फिर उसके बाद कहते हैं मणिबंध था जो हमारे रिस्ट है उसको, फिर उसके बाद
1: जी
0: कोहनी, शरीर के एक एक ज्वाइंट को धीरे धीरे श्वास पर श्वास के साथ उसको उसका व्यायाम करना है, तब जाकर आपके पूरे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग सजग और सरल हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे साधक फिर बड़े आसनों का अभ्यास कर सकता है।
1: जो ये योग दिवस हम मनाएंगे 21 जून को, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि सिंपनी ग्राउंड में कितने लोग होंगे करीब करीब, और क्या क्या क्या वो अगर वो योग के इच्छुक हैं, क्योंकि ये वो कैंप टाइप का पूरा लगेगा 1.5 घंटे का, तो उसमें वो अपने साथ क्या लेकर के आएंगे।
0: अल्मोड़ा।

0: के ऐतिहासिक संगीन खेल मैदान में जो योग अभ्यास चलेगा, उस योग अभ्यास अभ्यास के लिए योग विज्ञान विभाग सोमन सिंह जी विश्वविद्यालय उनको आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने के साथ साथ वो कहते हैं कि अपने साथ एक पानी की बोतल और एक टॉयल और सिलाएं, और बाकी विश्वविद्यालय अपनी ओर से उनके योगाभ्यास करने के मैटिंग की इन सारी चीजों की व्यवस्था विश्वविद्यालय अपनी ओर से कर रहा है।
1: जी, एक योगाचार्य होने के नाते आप लोगों से क्या कहेंगे कि योग को कैसे अपनाएं, अपने जीवन का कैसे हिस्सा बनाएं?
0: एक योगाचार्य होने के नाते मैं कहूंगा कि प्रत्येक साधक को नियमित रूप से कम 10 मिनट अपने जीवन में निकाल कर धीरे धीरे जो जो आपका अभ्यास बढ़ता है, जो जो आप इस योग की गंगा में बहने लगेंगे, आप 10 मिनट से धीरे धीरे उसी अभ्यास को 1 या 1.5 घंटे तक कर पाएंगे। शुरुआत में केवल 10 मिनट से करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, धीरे धीरे वो अभ्यास जब बढ़ने लगेगा तो
1: जी
0: जो साधक योग को अपने जीवन में अपनाएगा उसे लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने जब योग को 10 मिनट से अपने जीवन में अपनाया और इससे मेरे अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग दूर हो गए, तो धीरे धीरे 1 घंटे तक करेगा तो निश्चित तौर पर वो किसी भी क्षेत्र में कार्य, चाहे वो सेना के क्षेत्र में कार्य करो या उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य करो, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करो, खेल के क्षेत्र में, निश्चित तौर पर वो देखेगा कि मैं दिनों दिन अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की करने लग गया हूँ, और जो
1: जी
0: मैं पहले से अपने कार्य क्षेत्र में चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा रहता है, स्ट्रेस, बीपी की अनेक प्रकार की जो समस्याएं, तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए मैं सभी साधकों से कहूंगा अपने जीवन में अवश्य योग को अपनाएं। अगर आप जिस दिन से आप योग अपने जीवन में योग को अपनाएं, धीरे धीरे धीरे धीरे आप सभी का सर्वांगीण विकास होने लगेगा, और एक शुरुआत करो, शुरुआत के बाद धीरे धीरे आनंद आने का। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो योग के अनुभव या योग के लाभों को हम कैसे जान पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमें योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी लेकर गया योग ही जीवन जीने की कला है।
1: जी एक छोटा सा प्रश्न अंत में मेरा, कि हम जानते हैं कि आजकल जो भी वृद्ध घर में रहते हैं अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसे में डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। आपने हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, और ये कोई बात छुपी नहीं। और मैं वृद्धों की क्या बात करूँ, बच्चे भी डिप्रेशन में आ गए, आजकल इतना प्रेशर है, तो योग से क्या वो इन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं?
0: जी निश्चित तौर पर आजकल की जैसे आपकी लाइफ स्टाइल हो गई, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई, या फिर बुजुर्ग लोग घरों में अकेले रहते हैं, तो ऐसे में उनको इन सभी रोगों से निजात पाने के लिए योग को अपना मित्र बनाना होगा। कि जैसे योग योग की बात जब मैं कर दूं, अगर मैं किसी पौधे को नियमित रूप से पानी दूं और उसके प्रति मेरा अटैचमेंट बन जाता है, वो मेरा दोस्त बन जाता है। और हमने यहाँ तक कि देखा कि जब हम दो पौधे लगते हैं, एक पौधे के लिए हम नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स करते हैं और एक पौधे के लिए हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, तो निश्चित तौर पर जिसके लिए पॉजिटिव थॉट्स करते हो खिलने लगता है और जिसके लिए नेगेटिव थॉट्स करते हो धीरे धीरे सूखने लगता है।
1: जी
0: ठीक है, इसी प्रकार है, जब हम योग को अपने जीवन में अपनाने लगेंगे और योग के प्राणायाम और ध्यान की विधाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो धीरे धीरे जो भी घरों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं या बच्चों के साथ है कि बच्चे पढ़ाए के उससे बहुत ज्यादा होते हैं,
1: जी
0: जब योग को अपने जीवन में मित्र बनाने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आधे समस्याएं उनके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। क्यों? उनको पता है कि हाँ मुझे अभी ये समस्या हो रही है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे अभी ये समस्या है तो ये करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो क्या है, योग के भवसागर में डूब जाएगा और जीवन में जो तनाव जैसी चीजें हैं वो तो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ निश्चित तौर पर योग को अपने एक मित्र बनाना अवश्य होगा।
1: जी, तो अधिकारी आपने आकाशवाणी से बात की, आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विशेष कार्यक्रम मन को ठीक करना और विश्व को जोड़ना विषय पर योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी से संजय जोशी की भेंट वार्ता सुनी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम 16.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ही अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ

0: योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे।

0: कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।

0: Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद।
0: He reiterates his commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित, विलंबित लय झूमरा ताल में और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है नफीस अहमद खान ने।

अभी आपने उस्ताद अब्दुल लतीफ खान से सारंगी पर बजाया राग ललित सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें परिवेशकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। NTA ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवामिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान TB मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी SKM मेलानंदन पर एक विशेष कार्यक्रम। श्री मेलानंदन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के एक मैच में आज मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस समय ग्रुप डी के एक मैच में तुर्की का सामना पैराग्वे से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में दुखों, गमों, निराशाओं के भाव का आना बेहद स्वाभाविक है। बस इन लम्हों को धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये गम स्थायी नहीं होते। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब जिंदगी में आने वाले हसीन पल इन नकारात्मक यादों को कोसों पीछे छोड़ देते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। और इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं आपके फरमाइशी गीतों के साथ। गीत निर्झर के सभी श्रोता दोस्तों को आपकी दोस्त माधुरी का स्नेहिल अभिवादन।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के गीत से। इस गीत को आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने, बोल जयदीप साहनी के हैं और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने। यह गीत आप सभी के नाम, चित्तलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और राजवी, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर और साधना पवन पाटिल, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हमारे श्रोता मास्टर विठ्ठल सुरेशो, सुषमा सुरेशो, परिधि मायरा सुरेशो और फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकलम, नफीसा प्रवीण है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी हैं गंज डुंडवारा से, ग्राम चांदुर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, ग्राम राजुर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई, राजवीर गवई और उत्तम कुमार बघेल, लुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल हमारे श्रोता हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, और बेबी निशा लाडली, अमजद अली, अब्बास आलम मगनपुर झारखंड से।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी अंशिका कुमारी, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयंती केवट जी, और वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा। इसी गीत की फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा की। नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, लोरमी चचेड़ी। छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर। हमारे ये श्रोता है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर का गाया, कौसर मुनीर का लिखा और विशाल शेखर का संगीत बद्ध किया टशन फिल्म का गीत।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गीत निर्झर। अब हम आपको सुना रहे हैं दो दिलों का संगम फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पोडवाल ने, फाइज अनवर के लिखे बोलों की तर्ज बनाई है मिलिंद सागर ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी श्रोता। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया। और इसी गीत को सुना चाहते हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, हमारे ये श्रोता गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और बाम्बो सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती और उनके साथी। टैगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा हैं गुमला झारखंड से। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और इनका परिवार के सभी सदस्य।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए अब सुनते हैं झूम बराबर झूम फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खां और महालक्ष्मी अय्यर। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल ने। इसी गीत की फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार की। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। उत्तम नगर

उत्तम नगर दिल्ली से कमला और इनके बहुत सारे साथी, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावली पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवणे, मुंदई चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और इसी गीत की फरमाइश की है श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका सानू, अर्चना कुमार, कोयते वस्ती पुनावली से अजय सोनवणे, करिश्मा अविका और साईसा, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि कृष्णा घोटके, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से हैं ये, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद, आपकी नजर।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: गीत निर्जर कार्यक्रम में लीजिए पेश है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में जब तक है जान फिल्म का गीत। शब्द रचना गुलजार की और धुन बनाई है AR रहमान ने। पसंद करता है हमारे ये सभी श्रोता। कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया और मयंक भाटिया, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से ध्वनि और सानवी, ऊपरकोट मोहल्ला चकुनिटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान अब्बास और अब्बासी परिवार के सभी लोग, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से हैं राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार विद्यार्थी गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी अच्छे लाल बुल्की वाली और फलना झा। नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया पंकज चौरसिया पीहू और दिया। आगरा से हैं श्रीमती सरिता चौरसिया और सुमित चौरसिया और अवीर चौरसिया। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी हमारे ये श्रोता बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं। मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण फुनदी बाई बागरी भी यहीं से अपनी फरमाइश भेजते हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी जयश्री मेहत्री अंजला अंजलि करवा बाबा साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय टाउल PB कुलथे और गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया नमन और अपार ढिंगिया।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ, लीजिए पेश है इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और राहत फतेह अली खां की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। ग्राम हिगड़ी आलोट, जिला रतलाम, एमपी से जगदीप धाकड़ नाइमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी, और इसी गीत को सुनना चाह है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविक सिक्का, और राजनगर कांति निकेतन से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, माला मिश्रा, विभा मिश्रा, रुद्र गुप्ता, रिद्धि, ऐश बाग लखनऊ से रानी, मुकेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी, रश्मि नीलम गुप्ता, और सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव हैं बघेरा दुर्ग से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद बोहड़ा, गाछी पश्चिम मगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता। तो लीजिए सुनिए इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ फिल्म का गीत।

डव की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी हैं। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, फुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान है कस्बा अग्रवाल, मंडी टटेरी बागपत यूपी से, और गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्कर साबरी और जरीफ अंसारी, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वानिया, इंदिरा कॉटेज, तल्लीताल, नैनीताल उत्तराखंड से हैं, वरवट वकाल बुलढाणा से, नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या, जय हागे, गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, और ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी, आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, और इसी गीत की फरमाइश की है आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और निवान शर्मा ने, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और साइना शर्मा, उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरू लाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश और प्रतीक वाकतरिया, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी हैं, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन, नंगलखेड़ा भगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, सहेली रेडियो श्रोता संघ आज़ाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बे खत्री, सरदिया बी खत्री, नवासी जिक्रा, मोहम्मद सगर खत्री, हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए जुनून फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू का गाया, निदा फाजली के बोल हैं और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

जुनून फिल्म केसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से अब माधुरी केड़ा को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। आप कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे होंगे।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और खो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सबरंग कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ए हरिहरन के गाए इसरार अंसारी के कलाम से।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: अभी अपनी ही दूल्हा लैला का गाया ये गीत सुना।
1: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। लीजिए इस कार्यक्रम में आप सुनिए अनूप जलोटा की गई गजल।

जगजीत सिंह के गाए बशीर बद्र के इसी कलाम के साथ सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

समाचार सुनिए। बागेश्वर जिले के सुमटी गांव के लेग स्पिन गेंदबाज प्रेमा रावत का चयन भारतीय महिला टी20 विश्व कप में होने से जिले में खुशी की लहर है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने प्रेमा रावत को बधाई देते हुए कहा कि प्रेमा विश्व कप में अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को मजबूती देंगी और देश के साथ ही उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगी। उत्तराखंड की अंडर 19, अंडर 23 रणजी टीम और WPL में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रेमा रावत 10 मैचों में महज 5.55 की इकोनॉमी रेट से 16 विकेट हासिल कर टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में भी उन पर भरोसा जताते

0: U23 रणजी टीम और WPL में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रेमा रावत 10 मैचों में महज 5.55 की इकोनॉमी रेट से 16 विकेट हासिल कर टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में भी उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में बरकरार रखा गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल देश भर में री एग्जामिनेशन नीट परीक्षा 2026 का आयोजन करने जा रही है। देहरादून पुलिस इसके लिए अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस ने पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में कल इस संबंध में बैठक आयोजित की गई। SP क्राइम जितेंद्र चौधरी और SP सिटी प्रमोद कुमार ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर नियंत्रण कक्ष, CCTV और जैमर आदि की जांच करने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात की जाएगी। अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किया जाएगा। देहरादून पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में तमाम होटलों, ढाबों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में 21,000 अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन नीट परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चमोली जिले स्थित श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल सहित सभी आवश्यक समस्याएं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को भ्रामक बताया जिनमें यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक पेयजल स्थलों से नल हटाए जाने और श्रद्धालुओं को पेयजल संकट का सामना करने का दावा किया जा रहा था। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले वर्ष 14 जनवरी से कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए रेलवे और मेला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने हरिद्वार में पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेला प्रशासन, रेलवे और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। श्री कुमार ने कहा कि आगामी कुंभ के लिए अतिरिक्त ट्रेनों, अतिरिक्त कोचों, प्लेटफॉर्म प्रबंधन और यात्री सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को समय रहते अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को प्रत्येक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पंतद्वीप पार्किंग पर 20 से 21 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला स्वच्छता संयोजक मीरा रावत ने कहा कि इन क्षेत्रों में गंदगी के कारण धर्मनगरी में आ रहे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए इन क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधित व्यवस्थाओं पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और औद्योगिक इकाइयों सहित आम जनमानस से इस स्वच्छता अभियान में शामिल होकर सहयोग करने की अपील की गई है, जिससे तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुरबहार।

सुरों की बहार लिए पेश है सुरबहार, लेकर आए हैं आज एक ही कलाकार। गजल हो गई जब भी सोचा तुम्हें, फसाने बने जब भी लिखा तुम्हें। आज के हमारे कलाकार गीतकार इब्राहिम अश्क। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को माधुरी गैड़ा का स्नेहिला अभिवादन। दोस्तों, एक पत्रकार, कवि, शायर और फिल्मी गीतकार इब्राहिम अश्क उन शायरों में शुमार किए जाते हैं जो अपने लिखने की वजह से फिल्मी दुनिया में भी समान रूप से मशहूर हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ उनके लिखे कहो ना प्यार है फिल्म के गीत से। इस गीत को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने और आवाज़ हैं लकी अली और रामिया की।

मश्क को पहली बार ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है के गीत क्यों चलती है पवन के जरिए ख्याति मिली। फिर क्या था, अश्क ने इसके बाद बहुत सारे गीत लिखे। राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है के गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए उनसे क्रिश और कोई मिल गया फिल्म के गीत भी लिखवाए। आइए हम भी सुनते हैं कोई मिल गया फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस हफ्ते आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरबहार। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही कलाकार के तहत गीतकार इब्राहिम अश्क। इब्राहिम अश्क ऐसे शायर थे जो अपने बारे में बहुत कम बोलते थे, मगर उनकी रचनाएं पाठकों और श्रोताओं के सिर चढ़कर बोलती थी। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि कई कार्यक्रमों में लोग उनसे वाकिफ नहीं होते हैं, लेकिन रचनाएं पेश करने के बाद उन्हें उनके नाम से खोजते हुए आते हैं। ये उनके हुनर का ही जादू था। उनके लिखे कुछ सूफियाना अंदाज के गीतों को अलग ही मुकाम हासिल हुआ। अब आपको सुनवाते हैं उनका लिखा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं साधना सरगम और सुखविंदर सिंह, और संगीत भी सुखविंदर सिंह का है।

दोस्तों, इब्राहिम अश्क के लिए शायरी हमेशा ऐसा इल्म रही जिसे खुदा अपने खास बंदों को ही अता करता है। यही वजह है कि ताउम्र शायरी के प्रति वो खास तौर पर ईमानदार रहे। फिल्मों के लिए भी उन्होंने कभी फिल्मी होकर नहीं लिखा, बल्कि जमीन से जुड़े रहकर लिखा। लीजिए, पेश है उनका लिखा जीना मरना तेरे संग फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और अभिजीत का गाया। दिलीप सेन, समीर सेन ने इस गीत को संगीत से संवारा है।

मैं अपने फन के मैयार और विकार को कभी गिरने नहीं देता। इससे कभी कोई बेईमानी नहीं करता। सस्ती शोहरत और छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने को नीलाम नहीं करता। मैं गजल के शेर में उस बात का बेबाकी से इजहार करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। ये थे इब्राहिम अश्क। लीजिए सुनिए उनका लिखा क्रिश फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत राजेश रोशन का है।

तेरी जमी से उठेंगे तो आसमां होंगे हम, ऐसे लोग जमाने में फिर कहाँ होंगे। ये थे सुरबहार में आज के कलाकार गीतकार इब्राहिम अश्क। अगली बार फिर एक कलाकार के साथ हाजिर होंगी, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अभी दीजिए कार्यक्रम से माधुरी कैड़ा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने फना फिल्म से सुना। इस गीत को आवाज दी थी महालक्ष्मी अय्यर ने, प्रसून जोशी के बोल थे और जतिन ललित का संगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत फिल्म का नगमा। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में सुहाग फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। लीजिए पेश है किशोर कुमार का गाया दाग फिल्म का गीत। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश तलाश फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है SD वर्मन ने।

सैनिक भाइयों लीजिए कार्यक्रम के समापन में सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल सुरों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया लफंगे फिल्म का गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए लफंगे फिल्म के संगीत के साथ सैनिक भाइयों कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।
1: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाए,
1: झगड़ा मिटाए,
2: विश्वास जगाए।
0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पूनम जोशी का सितार पर बजाया राग अहिर भैरव। विलंबित लय 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है तरुण रॉय ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम जोशी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुपांक्ति का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का मेरी पसंद में। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसी भी शख्सियतें रही हैं, उनका परिवार भले ही फिल्मी दुनिया से वास्ता रखता हो, लेकिन उन्होंने परिवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों से, अपनी मेहनत के जरिए फिल्मी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। और भले ही उनके पिता जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना रहे हों, माँ गीतांजलि मशहूर मॉडल रही हों, या फिर उनके भाई अक्षय खन्ना फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता हों, यानी आप समझ ही गए होंगे कि इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं राहुल खन्ना, विनोद खन्ना और गीतांजलि खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना है। और आज हम खास तौर पर उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि 20 जून उनका जन्मदिन है। तो आज राहुल खन्ना को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज मेरी पसंद का सफ़र उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के नगमों के साथ तय करते हैं।

तो श्रुतों, राहुल खन्ना ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनका बचपन बॉलीवुड से उतना जुड़ा नहीं हुआ था जितना लोग मानते हैं। परिवार में फिल्मी माहौल ज़रूर था, लेकिन जब उनके माता पिता अलग हो गए उसके बाद वो अपनी माँ के साथ ही बड़े हुए और उन्होंने बचपन में बहुत कम हिंदी फिल्में देखी। सामान्य बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई और दूसरी रुचियों पर ध्यान दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल का सपना शुरू में एक्टर बनने का बिल्कुल न था। उन्हें ड्राइंग और कार्टून बनाना बेहद अच्छा लगता था और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। बाद में एक्टिंग के प्रति रुचि बढ़ी और उन्होंने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित ली स्ट्रॉसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में बाकायदा एक्टिंग की शिक्षा ली। और यही वो समय था जब उन्होंने एक्टिंग को गंभीरता से अपनाने का फैसला लिया और अपनी फिल्मों में आगे वो काम करें। इसके लिए उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया।

20 जून 1972 को मुंबई में जन्म हुआ राहुल खन्ना का। जैसा कि आपको बताया, अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के वो बड़े बेटे हैं और माँ गीतांजलि भी अपने समय की मशहूर मॉडल रहीं और भाई अक्षय खन्ना जाने माने मशहूर अभिनेता रहे हैं। और बात करें राहुल खन्ना के शुरुआती दौर की, तो फिल्मों में आने से पहले राहुल MTV एशिया में वीडियो जॉकी के रूप में बेहद लोकप्रिय हुए। उनकी बोलने की शैली लोगों ने खूब पसंद की। इसके बाद साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 1947 अर्थ, इस फिल्म से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान नज़र आए और इस पहली ही फिल्म में राहुल खन्ना के एक्टिंग की खूब सराहना हुई और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। साल 1999 में प्रदर्शित 1947 अर्थ भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म थी और राहुल ने हसन का किरदार निभाया और उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। तो इस फिल्म का एक गाना आइए सुनते हैं जो फिल्माया गया है राहुल खन्ना पर ही।

तो श्रोताओ, अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी राहुल खन्ना ने 1947 अर्थ फिल्म से, और इसके बाद साल 2002 में दीपा मेहता की एक और लोकप्रिय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई बॉलीवुड हॉलीवुड, और इस फिल्म में भी राहुल खन्ना के काम को सराहा गया। और साल 2005 में मल्टी स्टारर फिल्म प्रदर्शित हुई ऐलान, और इस फिल्म के ज़रिए भी

तो श्रोताओं, अभिनेता, मॉडल, वीडियो जॉकी और लेखक रहे हैं राहुल खन्ना। टेलीविज़न और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने हाथ आजमाया। अमेरिकी टीवी सीरीज़ द अमेरिकन्स में वो नज़र आए। उन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड शोज़ और इवेंट्स को होस्ट किया है और साल 2019 में वो दीपा मेहता की वेब सीरीज़ लीला में भी नज़र आए। और फिल्मों की बात करें तो उन्होंने यूं तो कम फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की वो अपने ख़ास अंदाज, अभिनय शैली के लिए और अपने ख़ास स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। साल 2007 में रकीब फिल्म में वो एक अमीर युवक रेमो की भूमिका उन्होंने निभाई थी। ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें इनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था।

तो श्रुतों, जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो उन राहुल खन्ना ने उन फिल्मों के नाम आपको बता दें। 1947 अर्थ हसन के किरदार के रूप में नज़र आए, बॉलीवुड हॉलीवुड में राहुल सेठ, दीपक मेहता, द एम्परर्स क्लब, ऐलान में करण शाह, रेमो मैथ्यूज़, रकीब फिल्म में और दिल कबड्डी में राजवीर सिंह की भूमिका में नज़र आए, और वेक अप सिड में भी कबीर चौधरी के रूप में उन्होंने अपना एक दमदार किरदार निभाया, फायर फ्लाइज में शिव के किरदार में नज़र आए, लॉस्ट में रंजन वर्मा के किरदार में वो नज़र आए। और जिन फिल्मों में भी उन्होंने भूमिकाएं निभाई, वो अपने आप में बेहद ख़ास रहीं।

तो सुनो, राहुल खन्ना ने भले ही कम फिल्में की लेकिन उनकी शालीन स्क्रीन प्रेजेंस, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सहज अभिनय और स्टाइलिश पर्सनल

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अर्पण।

कार्यक्रम अर्पण में कार्यक्रम सुनने सभी दिदवाणी के प्रभा पांडे के नमस्कार। दिदवाणियों खत्म बे अपू और हमारे इंतजारी और हमें पूछ किया कार्यक्रम अर्पण लिवे तो आपू सब स्वस्थ होने वाला कुशल मंगल होने वाला ने होने चाहें क्योंकि देखियो हमारे रोजाना दिनचर्या में जो काम होने ने उन्हें हम बिना परेशान है ये बिना थकावटे के काम कर लियो तो हमन के बहुत भल लागू और हमन के लिए थोड़ा बखत आपन लीजिए मिल जा हम लोग जमें थोड़ा आपू लीजिए कि काम कर सकनू आपू बारे में सोच सकनू कि लेकिन दीदवाणियों शारीरिक रूपल स्वस्थ होण चलो बहुत ऊ स्थिति छू जमा हम भल मनल भल ढंगल सारे काम काज कर सकनू।

और सारे काम काज बखत पर कर बेर आपू ले जिले थोड़ बखत निकाल सकनो। तेगड़ो अगर हमार शरीर स्वस्थ छे तो मानसिक पेशियों में ताकत और जोड़ों में लचीलापन और संतुलन विकास हो, यू सब हमन के गतिशील बढ़ोनी और हमन के स्वस्थ बढ़ोनी और भावनात्मक और शारीरिक रूप पर हमन के शक्ति ले मिले और हम हर काम के बखत पर कर लेनो। और सबने ठूल बात यह दगड़ियों की मैं हमार मन में सोच ला हमार सकारात्मक है जी। तो ये एक लीजिए निरंतरता, ये एक लीजिए जरूरी छू। हर दिन मन मन अभ्यास करूँ तो मन मन कह हम मजबूत ले होते जून। दगड़ियों अगर हम आज मजबूत बढ़ूँ तो भूल थे हम और

0: पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहूं, वक्त पर उठूं, वक्त पर सेतूं और ज़्यादा वक्त अपन शरीर बारे में अपन सोचूं और वी का दगाड़ में योग और व्यायाम कहें अपन दिनचर्या में शामिल कर वे हम स्वस्थ रह सकूं और आपों को निरोगी रह सकूं। तो कार्यक्रम में हम और आप आखिर कह बातचीत हम करूँ पहली कार्यक्रम में आखिर का वर्णु और सुनो हम इन्हें बात।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए। बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
6: अरे बुद्धू हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
7: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें।
0: स्वागत है एक बार फिर हम सब लोग योग कार्यक्रम में। दगड़ो कार्यक्रम में अखिल का वर्ण और बात हम अल्लाह करण लाग रही योगा और प्राणायाम बारे में। तो अब हम कार्यक्रम में अल्लाह अखिल के अपोलि जैसे एक बातचीत ली हुई अरिया आज कार्यक्रम में हमारे दिनचर्या में योगक महत्व विषय पर श्रीमती मंजू बोरा योग अनुदेशक अलमार दगड़ करी गई यो हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत।

0: ताकि तन और मन दोनों के लिए हम स्वस्थ रह सकूं और एक भर दिनचर्या अपना सकूं। यह हमारे बाहरी और भीतरी अंगों को या योग द्वारा हम स्वस्थ रह सकूं। अगर हम रोजाना योग प्राणायाम करना तो यह तनाव ले दूर हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता ले बढ़े, जैसे हमारे जीवन शैली में बदलाव ले हो और हमें सोच ले सकारात्मक है। तो आज दिव्यणियों हमले अपने कार्यक्रम में यही विषय पर बातचीत करना की योगक हमारे जीवन में के महत्व है और यह के लाभ मन के है सकनी। भारत सरकार आयुष मंत्रालय बटी स्वस्थ रुणालय जी कब का कार्यक्रम चलाई जाने लग रही और जब मैं कल यह योग आयोजन करी जाने लग रहा हूँ, मैं आज जानकारी देना अगली जी हम अंधगढ़ कार्यक्रम में जुड़ रही आयुष्मान आरोग्य मंदिर नगर अलमल बटी योग अनुदेशक मंजू बोरा जी। मंजू बोरा जी बहुत बहुत स्वागत छू आपू हमारे कार्यक्रम अपन में।
1: धन्यवाद
0: मंजू जी, हम कार्यक्रम में आज बात करनू योगल हम अपने शरीर में कैसे स्वस्थ धर सकनू और यह हमारे जीवन में के महत्व छे।
1: प्रभा जस की आपूल या पूछना चाह कि योगक हमारे जीवन में के महत्व छू का बेर एल हम 21 जून हूँ मनुनु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह साल 2026 में यह 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनु लाग रो। जैसा कि हर साल अलग अलग शीर्षक हूँ, अलग अलग थीम है, तो यह साल शीर्षक छू योग फॉर हेल्दी एजिंग। अगर एक मैं कुमाऊनी में कू तो बनी ये साल की वृद्धावस्था लीजिए योग, अर्थात कूण तात्पर्य यह छू बनी कि अगर हम नंचना बड़ी योग को अपने जीवन में अपनोल, हम अपन नंतिनों को प्रेरित करो, खुद या लीजिए प्रेरित हुआ जब हम वृद्धावस्था में होने वाले बहुत ज्यादा जो रोग छन, जो शारीरिक मानसिक परेशानी छन, उन बड़ी बच सकनों का भी तब जब यह लोगों को संदेश यही दे जा जस की एल हम मनु लागरो बरू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यह साल थीम छू योग फॉर हेल्थी एजिंग। कुल तात्पर्य है चूंकि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
0: अच्छा,
1: स्वस्थ वृद्धावस्था कब है ले?

0: उतबा हल ने जब हम अल्लाह बटे खुद और अपन नातिनों को प्रेरित करूल की वो नियमित योग का अपन जीवन में अपनाओ कभी प्रभाव बनी जिसके हम बात करने लग रहे योग अखबार में कि हमको योग दिवस मनाते हुए 12 साल हरे ना एक सोचना बात छो जिसकी मैं योग क्षेत्र में छू योग अनुदेशक छू तो मैं जदूल या गहन अध्ययन करो वे आधार पर मैं ये कह सकन जदिन बटी सृष्टि की रचना है वेद उत्पन्न है उदिन बटी योगक प्रादुर्भाव हो योगक जो वर्णन छू वो कहले आज नहीं लिख रहे पहले बटी वेदों में भी वर्णन छू ऋषि मुनियों द्वारा भी वर्णन करी जा रो और यह योग शास्त्र जो प्रेरणा छन वो छन महर्षि पतंजलि की महर्षि पतंजलि या कुमचानी अगर योगक मार्ग में आगे बढ़ना छू तो पहले जीवन में अनुशासन कर लियाओ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
1: तो ये अष्टांग योग केचु मंजूरी यो लो मैं अभूत है जान जानो कि अष्टांग योग कथे कोनी
0: अष्टांग योग का तात्पर्य है बनी योगक आठ अंग आसन और प्राणायाम तृतीय और चतुर्थ नंबर में उन्हें यहाँ पहली हूँ यम और नियम तो यम और नियम ये मानसिक क्रियाविधि छन अर्थात हमारे सोच हमारे समझ हमारे विचार ये सब यम और नियम में उन्हें जब हम अपन जीवन में इनो को अपना लेनो कद अगर कस व्यवहार करन छू कस बुलान छू कस उठन छू अभिव्यक्ति के छन जब तक ये जीवन में परिपूर्ण रूप परिपक्व नहीं होल तब तक यह आसन और प्राणायाम के लाभ होने नीचू यस महर्षि पतंजलि स्पष्ट रूप में पतंजल योग सूत्र में करो
1: दीदी अकुल बता की अलविरक विषय छू 2026 की स्वस्थ वृद्धावस्था लीजिए योग लेकिन बचपन बटी कशिक हमें योगक शुरुआत अपन रोजाना दिनचर्या में या अपन घर परिवार में जो लामो छोट बच्चे छन हम कर सकन
0: बिल्कुल सही बात पूछी बहनी आप देखो जो हम छिन गृहिणी माता पिता हम एक शीशा का वाई हूं कक समझावेर के नहीं हूँ बताबेर के नहीं हूँ बल्कि व्यवहार में उतार भेर हूँ जो हमको देखल अगर हम आपको घर बात करो मैं राति ब्याह अगर मैं नियमित रूप साधना करनु योग योग अभ्यास के जीवन में उतारनु या अभ्यास करनु तो मैं नंतिनों को देखा इजा आपू या कोवाल योग करना था ये आसनक नाम के जो यल के हो तो वो खुद खुद प्रेरित होनी तो जैसे मैं नानतीन ले राती रोज तीन बार सूर्य नमस्कार करनी प्राणायाम करनी ओम उच्चारण करनी अब मैं उन्हें पिछाड़ में लठे लिबेर नहीं ठाड़ है कि करो करो तुमको करना छो जब उन्होंने देखो कि हम ईद करण लग रहे हैं हम बाबू करण लग रहे ये फैद हूँ और ये नियमित जैसे कि खान पीण नाण धोण सब चीज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग छू उसी का यह योग साधना ला हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग छू गवे तो नंतनों को सिकुना लीजिए हमको खुद वो मार्ग का अपना पड़ो आधो घंटे का लीजिए सही 20 मिनट तक लीजिए सही खामो बिछा दी चादर बिछा दी आपू बैठ आपू नंतनों को बैठाई हूँ मैं यह प्रभाव देखियो भीतर बटी
1: वृद्धावस्था योग अगले हम बात करने लाग रहे हैं और अंतिना अगला हम बात करा ली हम बात युवा वर्ग करो आज बखते जो मान हमारे युवा हमारे भविष्य तो इनत लीजिए कशिक योगा के कार्यक्रम है सकने ताकि यूं ले अपन दिनचर्या में योग के शामिल कर
0: बिल्कुल भल बात तुम पूछी देख सब पहले हम नंतिनो बात करी अब युवावस्था बात करो युवा ये को उल्ट कर दियो वायु जैसा वायु चलायमान हो ना गतिमान हो उसे है वो किशोरावस्था बखत वो बिल्कुल चलायमान होनी चंचल प्रवृत्ति इनको साधना के लिए योग एक दिव्य माध्यम बता रहा वेदों में शोध अनुसंधान कि युवाओं को कसी भल मार्ग में ले आई जो यह एक भटकने की उम्र है कि उम्र कहकर जोर नहीं चलन जैसे हाउ बहते रहे ना कोयले दिशा में उसे युवाओं चंचल मन ले कोई दिशा में बग जा मजबूत अगर मानसिकता नहीं हली तो आपको दगड़ियों दगड़ कोई लवेग में लग जा आपको दगड़ी कस मार्ग में जानी उनमें निर्भर करूं अगर युवा वर्ग नियमित रूप सूर्य नमस्कार करूं तो हम देख लो ना जो नानतिन छन उनका बचपन तो हरा गो नाना नानतिनों में युवाओं जो गुण देखने फजानी उन्हें बातों उसे करने फजानी हो तो बचपन का सुरक्षित रखना लीजिए युवा अवस्था का सुरक्षित और सकारात्मक दिशा में लगुणक लीजिए सूर्य नमस्कार एक अचूक आसन छन वो निरर्थक तो नहीं जा सके
1: 21 जून हम योगा दिवस मनो लाग रहे हैं सारे विश्व में मनाए जाए पहली आयुष्मान आरोग्य मंदिर बटीला कोई कार्यक्रम शुरू हरी कि योग दिवस लीजिए
0: ये मैं कहूँ की बहने जब 21 जून ऊन हबेर पहली 20 या 21 मई बटी काउंट डाउन उल्टी गिनती जाए हमको नो वो शुरू हो जाए की एक महीने बच रहा है एक महीने में के करी योगा बहन एक महीने में हम के करूँगी रूपरेखा बनो नो और बीच बीच में ये मैं यस हूँ कि हरित योग ऑफिसों में जबेर वाई ब्रेक चीयर योग अब जैसे मैं बात करूँ हरित योग अब ये मैं कहो कि एल हमूल जबेर या मलिक असार देवी में जागेश्वर मंदिर में जबेर वहाँ योगक शिविर लगाए कसमें जैसा हरी भरी प्रांगण हो और हरी भरी वृक्ष हो वहाँ स्थानीय जनता को जमकर भेर लोगों को प्रेरित कर भेर भी लीजिए पहले प्रचार प्रसार करी जाए वो जाग बटी अनुमति ले जाए हरी घास बीच में

0: बेस योग अभ्यास कराए जाए। अब ऑफिसों में क्यों कि वीकली जिला अभियान चल रहा कि ऑफिसों में जय जय बेर हम योग अनुदेशक जैसन वाई ब्रेक से कि ऑफिसों में 10 बजे बटी 5 बजे तक वहाँ कर्मचारी होनी है। जब हम काम करनो दिन मान भर तो हमारे मानसिक स्थिति में थकावट ले जाए और शरीर ले जकड़न में जाए। अगर हम कुर्सी में बैठ रहो हमारे खुद तली होने लटकी रह जानी। जल क्यों की कभी कभी यह शिकायत ले जाए खुटा में सूजन आ जाए झंझनाहट आ जाए गर्दन अकड़ जाए कंप्यूटर में काम करना करने रजिस्टर में काम करना करने आगे नो झुक दे तो वीक लीजिए सरकार तरफ वाई ब्रेक चल रहा। अब चाह बखत हॉल दिन में लंच बखत हॉल जो आधा घंटे एक घंटे विश्रामक मिलू वहाँ बटी 15 मिनट आप लोग आपको दिला और कसी दिला का भेर ये का हम वहाँ जबेर उनको अभ्यास करो नो
1: जो लोग जगह में आजकल आपको योग सीखने लगना चाह को यश महत्वपूर्ण योग छ जिनको हम रोजाना आपको दिनचर्या में शामिल कर सके।
0: योग बहुत चिन्हबड़ी अपूर्ण अपूर्ण शरीर अपूर्ण अपूर्ण उम्र के हिसाब पर कोई जो विशेष जानकार छू वह बटी पूछ ली।
1: तो दीदी मैं एक महिला छू मेरे दिखा हमारे और बहुत तिदबड़ी होना जो हमारे कार्यक्रम गए सुनना होना तो आप हम महिलाओं दीजिए रोजाना दिनचर्या में को योग छ जन का हम अपने रोजाना दिनचर्या में शामिल कर सकन
0: कि जो हमारे पहली बटी घरों पर बुड़बाड़ी हुई थी जब कभी था खेत पारी बटी काम करवे उछिया जब आपको घर पटांगण में लंब खुद करवे भेज जाती वो हम योग में कर देनो दंडासन जो घुटांग लंब कर बे। आज अगर कोई बैठ लो कोई सोचा लो इधर कुर्सी पड़े या इसे लंब खुद कर बे किला बैठना होना लेकिन भी विज्ञान का समझी जो तो महिलाओं को लीजिए विशेष आसन हुई छो दंडासन जब हम दि घुटांग लंब कर बे बैठनो दि खुट हम लंब करनो पीठ का हम सिद्ध धरनो हमारे शरीर स्थिति में अंग्रेजी एल आकार रखा जाए तो महिलाओं को विशेषकर काली आसन करण चाहे और उकड़ू हबेर बैठ बे रात ब्याण अपन घर में झाड़ू और पोछ करण चाहे तो यह अगर नियमित रूप कोई महिला कर ली तो निश्चित रूप वो स्वस्थ रहो।
1: संदेश आपको हमारे सोने वाली
0: यह कार्यक्रम माध्यम में यही कौन चूल हर व्यक्ति का अपने जीवन में योग के एक साधना के रूप में अपनो चाहे सावधानी यह धरण चाहे की क्या आपको कोई रोग तो नहीं छो आप उम्र का दुख छो जो आपको रोग छो जो आपको उम्र छो वो हिसाब पर कोई ले योगक जानकार व्यक्ति है बटी पहले पूछ लिया कि अपन जीवन में जो आपको आधा घंटे योग करण चाहता तो उमें को आसन और को प्राणायाम करण चाहे नहीं था उठा बटी सुन बेर कोई योग करण लाग रहा उगले सिद्ध अपन जन करिया बल्कि कोई जानकार व्यक्ति बटी पहले पूछिया और अपन बारे में उसको बताया।
1: बहुत सुंदर जानकारी आप बोलिया योगक संबंधी हम अनुक्रिया कार्यक्रम माध्यम मंजूती देख लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: हमर दिनचर्या में योगक महत्व विषय पर योग अनुदेशक श्रीमती मंजू बोरा दगर करी गई यौ क्षेत्र संकलित बातचीत अल्लाह हमूल सुने। अब कार्यक्रम में मनागिल के वर्णु कन्नु आपो मनोरंजन और सुनु योगी।

स्वागत छु आपू सबनक एक बार फिर यह कार्यक्रम में। दिसबड़ी हमारे सरकार बखत बखत पर कत कर योजना चलाते रहे, राज्य सरकार हो, हमारी भारत सरकार हो, नागरिकों कल्याणक लीजिए कत कर कल्याणकारी योजना चलोनी, ताकि सबनक विकास है चुको और सब विकास बाट पर अखिल के बढ़ सको और आम जनता के में वित्तीय सहायता, आवास, सुरक्षा, सशक्तिकरण प्रदान करना के लिए पत का योजना शुरू करी जानी। जस की एक योजना छो दगड़ियो नमो ड्रोन दीदी योजना। यह योजना हमारे देशक प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक घोषणा करी गई और एक शुरुआत करी। दगड़ यह योजना का उद्देश्य ची महिलाओं के एक स्थायी व्यवसाय मॉडल में मार्गदर्शन दीवे सशक्त बढ़ो जाऊँ अपन आपके अखिल के बढ़ सकनी और ड्रोन प्रौद्योगिकी दकार आधुनिक कृषि परिस्थिति की तंत्र के बदल सकनी और यह 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण ले यमें दे जा।

जमीन 10 दिनों उड़ान प्रशिक्षण और 5 दिनों कृषि उपयोग वीक मरम्मत रख रखाव संबंधी प्रशिक्षण शामिल छन। देखो यह ड्रोन में जब हम ये ट्रेनिंग दी जाए तो वी बात है ये में ड्रोन पायलट नामक एक सर्टिफिकेट दी जा जमें उनके प्रदान करी जा। और यह योजना उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बढ़ो और कृषि तकनीकी के उपयोग में बढ़ावा देना लीजिए। यह योजना एक केंद्रीय योजना छ और जमें कि महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को कृषि ड्रोन उड़ोना और मरम्मत तक प्रशिक्षण दी जा ताकि वो अपन के आगे के बढ़े सको और देश विकास है सको। देखो जब कोई ला योजना सरकार शुरू करें तो महिलाओं के लिए कुछ खास योजना होनी जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना छू इनमें तकनीकी को बढ़ावा देना के लिए खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशकों को समान और सुरक्षित छिड़काव करना के लिए यह ड्रोन दीदी योजना शुरू करी गई थी। यह उद्देश्य यही थी कि मार्गदर्शन कर वे इन्हन के सशक्त बढ़ाई जाओ और जो उन्हें सालाना आय छू उको और आगे के बढ़ सको। महिला स्वयं सहायता समूह अगर मिल वे महिलाओं को सशक्त बनाने हमारे सरकार एक बहुत उज्ज्वल योजना छो। यह योजना कत के मंत्रालयों और विभागों द्वारा उन्हें सहयोगक प्रयासों द्वारा यह योजना चलाई जाने लग रही। देखो इनमें पात्रता यही छो कि इनमें समूह सदस्यता लेना बहुत जरूरी छो ताकि हम ले यह योजनाओं का फायदा उठा सकूँ। देखो बात छोट छोट छे लेकिन इन्हें जानकारी हम सबन को हुआ बहुत जरूरी छो। जब जानकारी हेल तबे हम योजनाओं का फायदा उठा सकनो। इमा आयुष्मान धर रही ड्रोन उड़ना और ट्रेनिंग के लिए महिलाओं 18-50 वर्ष से और यह स्थान यह जग संचालन ऊ ग्रामीण और कृषि खेतपाती जग छ जहाँ ड्रोन सेवाओं की मांग और उपयोग जरूरी छ। तो देखो अगर आपूला यह योजना लाभ लेना चाचा आपू को लिए पात्रता यह उद्देश्य जरूरत जरूर पत्तो होना चाहिए ना छोट छोट बातों को ध्यान धरवे ये योजनाओं जानकारी हो तो हम ले ये योजनाओं फिर जरूर उठा सकनो। आप कार्यक्रम में हमारा आगे का वर्णन करना आप मनोरंजन और सुनो योगी।

बहनें अभी सुन रहे थे कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गाँव पहुँच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गाँव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आजीविका से संबंधित योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने युवाओं से देश को 2047 तक विकसित बनाने की मुहिम में शामिल होकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि रोजगार उन्मुखी योजनाओं और निवेश के प्रति सकारात्मक माहौल के चलते राज्य में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। इससे युवाओं के लिए नौकरियों के बेहतर अवसर बने हैं और राज्य विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नीतियां लागू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी योजनाओं से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं जो देश को विकास की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। उन्होंने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

0: योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल आयुष्मान योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के माध्यम से हजारों गरीब एवं जरूरतमंद मरीज गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। सीमांत चमोली जिले में भी इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के अनुसार जिले में अभी तक लगभग 2,39,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत 72,700 से अधिक लाभार्थियों को उपचार मिल चुका है, जबकि अभी तक 118,08,58,372 रुपए का उपचार कराया जा चुका है।
1: अटल आयुष्मान योजना में हमारे सभी चिकित्सालयों में जो है संचालित है, कोई भी रोगी वहाँ पे आके भर्ती होने पर इसका जो है लाभ उठा सकता है। अभी तक वर्तमान में जनपद चमोली में जो है 2,39,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसमें जो है अभी तक जब से ये योजना चालू हुई है 72,700 लोगों ने इसका लाभ लिया है, और जो इसमें धनराशि का जो व्यय हुआ है वो आपको सुन के जो है ताजुब होगा कि ये 118,08,58,377 रुपए की जो है धनराशि इस पर जो है खर्च की गई है। और ये जितने भी हमारे जनपद चमोली के सरकारी अस्पताल हैं, और अगर वहाँ पे इलाज नहीं हुआ और बाहर कहीं रेफरल होता है तो जनपद के बाहर देहरादून में या देहरादून के बाहर जो है अन्य प्रदेशों में भी इसका लाभ जो है लाभ लिया जा सकता है।
0: योजना का लाभ उठा चुके मरीजों और उनके परिजनों का भी कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ये पहल गरीब परिवारों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के 5,200 से अधिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सिद्धार्थ साहा ने बताया कि कुमाऊं क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले लाभार्थियों के लिए ये राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना से क्षेत्र के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने कहा कि रोजगार सृजन और कौशल विकास विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। टिहरी संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले में स्थित निर्माणाधीन सिल्कियारा टनल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जल्द ही सुरंग के अंतिम चरण के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द ही सुरंग से आवाजाही शुरू करने को कहा। सांसद श्रीमती शाह ने सिल्कियारा टनल उत्तराखंड की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने वाली एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी परियोजना है। इसका पूरा होने से चारधाम यात्रा और अधिम सुगम सुरक्षित होगी, साथ ही स्थानीय नागरिकों यात्रियों पर्यटकों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा भी मिलेगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को अपने त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए IFMS पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को नाबार्ड के अंतर्गत पशुपालन फिशरीज आदि आजीविका से संबंधित विभागों में बजट की कोई सीलिंग न रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आजीविका से संबंधित इन योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज में भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सके। मुख्य सचिव ने नियोजन और वित्त विभाग को सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए लगभग 2 से 3 हजार करोड़ के प्रस्तावों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा योजनाओं को शॉर्टलिस्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर टेंटेटिव लिस्ट तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास में विशेष

0: विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत की जा सकती है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को स्कूल और अस्पताल भवनों को सुदृढ़ किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश की 8 जिलों में कुछ हिस्सों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं कहीं बिजली चमकने, आंधी चलने और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
1: 20, 21, 22, 23 में भी जो है उत्तराखंड में हल्की मध्यम एक्टिविटी कहीं कहीं से लेके कुछ स्थानों पर मिलने की संभावना, विशेषकर पर्वतीय आंतरिक जो जनपद है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि कहीं कहीं मिलने की संभावना है। साथ ही तेज झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। साथ ही जो उत्तराखंड के अन्य मैदानी और पर्वतीय जनपद है, खासकर की पर्वतीय जो जनपद है, वहां पर भी जो है गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 21 में भी उत्तराखंड में जो है थंडरस्टॉर्म टाइप की एक्टिविटी मिलती रहेगी, तो गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं जो है झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। थैंक यू। अगले जो है 5 से 7 दिन में उत्तराखंड में हल्की मध्यम एक्टिविटी जो है विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने की संभावना।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पौड़ी में भव्य रन फॉर योग रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़े, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी एवं अपर जिलाधिकारी FR चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक ने कहा कि योग देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आजीविका से संबंधित योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज़ कर रहे हैं कतील शिफाई के कलाम से, आवाज़ भूपिंदर सिंह की।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी। जानमाज आज प्रस्तुत है श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक जानमाज।

0: अब्बा जान।
1: अरे अब्बू, आप यहाँ लेटे हैं?
2: अरे भोली,
1: कैसी तबीयत है?
2: अब ठीक हूँ बेटा।
1: आपने बत्ती भी नहीं जलाई?

0: अकेली पड़ी है।
1: मगर तू कैसे आ गई बेटा? तुझे तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला?
0: आपने क्या समझा, मैं बड़ौदा गई हूँ तो कभी दिल्ली आऊंगी नहीं?
1: नहीं नहीं,
0: तबीयत ठीक नहीं है क्या?
1: ठीक है बेटा, अब तो ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी रह गई है। वायरल फीवर हो गया था ना।
0: हाय रब्बा।
1: हाँ, फिर गर्मी भी बहुत है, कभी इतनी गर्मी में रहा ही नहीं हूँ।
0: हाँ, बला की गर्मी है अब्बा, क्या करें? कभी कभी सोचा भी

0: हाय रब्बा।
1: हाँ, फिर गर्मी भी बहुत है, कभी इतनी गर्मी में रहा ही नहीं हूँ।
0: हाँ, बला की गर्मी है अब्बा, क्या करे। कभी कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जन्नत, अपनी खूबसूरत वादी को यूं छोड़ना पड़ेगा, अपनी जड़ों से उखड़कर नया पसेरा ढूंढना होगा।
1: हाँ बेटा, अब तो बागों में प्लम, आड़ू, खुबानी पक गए होंगे। पता नहीं नब्बा जाता भी है, फल उतरवाए कि नहीं, या वहीं पेड़ों पर लदे लदे सड़ रहे होंगे।
0: अब तो त्रेल से भी पकने वाले होंगे। हाँ, हमारे बाग की त्रेल सारे कश्मीर में सबसे मीठी है। वहाँ वहाँ घर में कोई है अब्बा?
1: हाँ बेटे, बशीर और उसकी बूढ़ी माँ है, वो लोग वहीं रहना चाहते थे, उन्हीं के हवाले कराया सब कुछ। क्लिनिक में अतर सिंह है, जब कर्फ्यू नहीं होता तो खोलता है, नहीं तो बंद रखता है। खिजरा उसकी मदद करता है बेटे।
0: आपके पेशेंट भी कितने दुखी होंगे होंगे, आपसे बात करके ही आधी तकलीफ तो दूर हो जाती थी। सैकड़ों लोग अब्बा आपको हाथ उठा उठा के दुआ देते थे। मेरा सर भी पकड़ से ऊंचा हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं एक फरिश्ते के साथ में रह रही हूँ।
1: बेटा, वो सब तो खुदा की रहमत थी, उसी की अता की हुई शिफा है जो बीमारों और मुसीबत ज्यादा इंसानों को सेहत और सुकून बख्शती है।
0: अब हुजूर, अंधेरा घिराया है, लाइट जलाती हूँ।
1: हाँ बेटा।
0: बताओ क्या बना के लाऊं आपके लिए, चाय, कहवा या कुछ?
1: बेटा नहीं, गर्मी बहुत है। देख, अंदर बावर्ची खाने में शायद कहीं शरबत हो, दो गिलास बना ला।
0: अबू, खाली शरबत में मुझे टाल नहीं सकोगी।
1: नहीं, नहीं बेटा,
0: आज ईद है, मुंह मीठा करके ही जाऊंगी। ईद मुबारक हो अबू।
1: आपको भी मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अच्छा देखो, बहादुर ने सुबह कुछ खीर नुमा बनाया था, शायद फ्रिज में होगा।
0: आप क्या खाओगी?
1: अरे मुझे मुझे तो बिल्कुल ही भूख नहीं है, बस प्यास लगती है बेटे, गला सूखता है। वो बहादुर को भी शाम को छुट्टी चाहिए थी, अपने चचा से मिलने गया है, नहीं तो सूप बना देता।
0: तो चलो आज फिर मेरे ही हाथ का सूप पी लो।
1: कहां से आ गई ये पगली, मेरी ईद को मुबारक करते।

0: लीजिए अबू, शरबत लीजिए।
1: सारा बदन तोड़ कर रख दिया है। वे मैं जी।
0: सबको बीमारी में माँ ही याद आंदी है।
1: माँ भी और कैसर की माँ भी।
0: वो कैसे है कैसे भाई, अब तो काफी बड़े हो गए होंगे ना।
1: हाँ बेटा, बड़ी बड़ी मूछें रख ली हैं। हाँ, और एक बेटी का बाप भी बन गया।
0: अरे ये फोटो तो बड़ी ही प्यारी है। यही है मेरी भतीजी।
1: हाँ,
0: पापी भी इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही है।
1: अरे भाई, जर्मन है, सुनहरी बाल वाली मैम। तेरी तरह काले बालों का घोंसला थोड़े ही सिर पर। अभी फोन आया था उसका लंदन से, ईद मुबारक करने। हाँ बस बेटा, अब तो यही रह गया है।

0: ने कहा था एक ही बेटा रखो।
1: अरे ठूप पर, तू भी तो है, जब भी आई है ढूंढती हुई अपने अब्बा को।
0: आप तो मेरे अब्बा ही नहीं, भगवान हो। आपने मुझे नया जन्म दिया है, मुझे मुझे मौत के दरवाजे से वापस खींच लाया है। इस जिंदगी का एक एक लम्हा आपका दिया हुआ है।
1: अल्लाह का करम है बेटा, उसी परवरदिगार के रहमो करम से मुझे ये बच्ची नसीब हुई है।
0: मैंने आपको बड़ौदा से कई फोन किए, आप घर नहीं थे।
1: मैं
0: क्लिनिक में अतर सिंह से बात हुई, बहुत घबराया हुआ था बेचारा। पता चला आप जैसे फरिश्ते के पास भी बंदूकें लेके वो आए थे, रुपए मांगी, जो कुछ मिला लेके चले गए।
1: हाँ बेटी, बहुत रात हो गई थी, पेशेंट थोड़े ही थे, दूर से क्रॉस फायरिंग की आवाज आ रही थी और वो हाउस बोट वाला सुभाना जख्मी होकर दो तीन लड़कों के सहारे आया हुआ था।
2: कोई अपनी जगह से ना हिले, हमारी बंदूकें आग उगलती हैं।
1: ये क्या कर रहे हो बेटा?
2: हम जिहाद कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, गोला बारूद खरीदना है, निकालो डॉक्टर जो भी है तुम्हारे पास।
1: अरे बेटा, आजकल तो पेशेंट ही बहुत कम आते हैं।
2: बकौमत, तुमने उम्र भर कमाया है, सरकारी अस्पताल से अलग, अपनी क्लिनिक से अलग। आज जब वादी को आजाद करने का मौका है तो तुम पीछे हटते हो।
3: कमांडर साहब, ये लोग सीधी बात समझते नहीं, सरकारी रोटियां तोड़ते रहे।
4: ओए चुप कर, शर्म कर। कमांडर क्या भूल गया, इसकी माँ को इसी डॉक्टर ने बचाया था 6 साल पहले, अभी भी बुरबतरी सी घूमती है।
3: फिर यहाँ आए क्यों हो, घर में बैठो।
5: ए, वक्त जाया मत करो,
3: उठाओ कैश बॉक्स, खोलो।
5: ची ची, बस 600 रुपए।
2: सब लोग अपनी अपनी घड़ी अंगूठी चैन उतार कर यहाँ रख दो। मेज पर उतारो
1: बेटा,
2: बंदूक तारों का नहीं तो।
1: बेटा, ये जो तुमने गोली बारूद से इस पूरे मनवादी को धुआंधार कर रखा है, बाजार खुलते नहीं, टूरिस्ट आते नहीं, फल मेवे पेड़ों पर सड़ जाते हैं, अरे किसान, कालीन बाफ, शाल बनाने वाले, बोट वाले, तांगे वाले, छोटे बड़े दुकानदार, मजदूर सब बेकार हो गए हैं बेटा।
5: हमने किया ये सब, ये जो फौज है ना फायर करती है, कितने मासूम गोली का शिकार होते हैं। हमें चूहों की तरह गली कूचों में, खेत खलिहानों में, पहाड़ों के दरों में ढूंढते फिरते हैं। हम सारे निजाम को नेस्त तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह, हम अपनी वादी को आजाद कर देंगे।
1: बंदूकों रॉकेटों से ये हसीन वादी कब्रिस्तान बनती जा रही है, अरे एक वीराने को अब क्या आजाद करोगे। लोगों की रोजी रोटी छिन गई, अमन लुट गया, घरों से लोग बेघर हो गए, अपनी अपनी बेटी बहू को लेकर लोग मैदानों में भाग गए। क्या क्या यही आजादी है, मैं पूछता हूँ यही आजादी है?
3: बहुत बोलता है, अभी बंदूक का मुंह खोलूं तो सबकी हयात लूट लूं, ये बकवास घुट जाएगी।
5: चलो चलो चलो, जल्दी चलो, उठाओ पैसे और ये घड़ियां शड़ियां,
3: हम फिर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, घर तक पहुंचेंगे, हमें पैसा चाहिए, गोली बारूद चाहिए।

0: नहीं बेटा, मगर दिल टूट गया। जिस शहर में मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिला था, वही कल के लौंडे गुस्ताख छोकरे इस तरह से बदगुफ्तारी करे, अच्छा नहीं लगा बेटा। अतर सिंह बहुत घबरा गया था, रातों रात उसने मेरा सामान बांधा, घर को जैसे तैसे बंद किया। बरसों से कैसर की अम्मी ने हजारों चीजें करीने से जोड़ी थी, तुम्हें तो मालूम है।
1: हाँ।
0: आखिर में क्या क्या सिर पर उठा था। एक गाड़ी में जरूरत का सामान रखा, अतर सिंह जान पहचान के ड्राइवर हुजूर सिंह को ले आया था। आजकल वही मेरे पास है, यही पीछे सर्वेंट रूम में बहादुर के साथ रहता है।
1: काश काश कैसर भाई यहाँ होते।
0: अरे बेटी, वो तो अपनी अम्मी के सामने ही जर्मनी चला गया था। उसकी शादी के सदमे ने ही तो सकीना को तोड़ दिया, मुझे मुझे अकेला कर गई।

0: और मुझे भी आपने बड़ौदा भेज दिया। हाँ
1: अरे तो अच्छा ही तो किया पगली, राजा राजा महाराजा भी लड़की को कभी कभी अपने घर रख पाए हैं हैं?
0: हाय वीरप्पा, कुकर की सीटी बज गई।
1: कुछ ही बरसों में सब कुछ बदल गया, क्या से क्या हो गया।
2: मुबारक हो टाटिया साहब।
3: आपको भी, आपको भी।
4: वाह क्या कोरमा बना है, केसर की खुशबू से सरदा महक रहा है।
5: अरे भाई अपनी तराबी में मेरे लिए भी जगह बनाओ।
2: अभी से कहो मेरे हिस्से का गोश्ताबा रिश्ता भिजवाएं।
3: अरे भाई जरूर जरूर
5: भाई, डॉक्टर साहब के घर के बाजवान का तो इंतजार रहता है।
3: वाकई। अरे भाई जी भर कर खाइए आप लोग।
6: गोश्ताबा रिश्ता भिजवाओ, सब तराबियों में तबक माल जलवाओ।
3: हाँ लीजिए लीजिए।
6: डॉक्टर साहब।
3: कौन?
7: डॉक्टर साहब।
3: अरे अथर सिंह आओ।
7: माफ करिए मैं ईद के दिन तकलीफ दे रहा हूँ।
3: हाँ हाँ बोलो क्या बात है।
7: जनाना वार्ड के बेड नंबर 11 के पेशेंट की हालत बड़ी खराब हो रही है।
3: अच्छा।
7: होश में आते ही वो पट्टियां नोच रही है और उठकर भागना चाहती है।
3: ओह माय गॉड।
7: डॉक्टर मल्होत्रा परेशान है, समझ नहीं पा रहे की करण। बीपी डाउन है, इस वास्ते सेडेशन देते घबरा रहे हैं।
3: अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा आप लोगों को, बस मैं अभी हाजिर हुआ।
5: कोई बात नहीं।
6: सुभाना यहाँ ख्याल रखो, सब ठीक से खाएं। मैं अभी आया, और अंदर सकीना को भी बता दो।
3: आइए अतर सिंह आओ मेरे साथ। क्या बात है, क्या हुआ हमारी बच्ची को? ए क्या बात है टठई?
0: मैं जाना है, मैं बाहर जाना है, नहीं रहना है इतने, नहीं ठीक होना मैंने।
3: ठीक है ठीक है। डॉक्टर ये सब क्या है, खोलो ये पट्टियाँ, क्यों बात रखा हमारी बच्ची को?
8: खोलो।
3: भोली इधर देखो बेटा, तू वाकई भोली है। अच्छा ये किसने तेरा नाम रखा प्यारा सा, जैसी तू प्यारी सी गुड़िया है, हैं? माँ ने रखा होगा है ना?
0: माँ दी बात ना करो, माँ दी बात ना करो, बहुत खराब थी, मेरे जन्म से ही रब कोल चली गई। मैंने माँ कभी नहीं देखी, कभी नहीं। वो कुलबीरे की माँ, माँ ने डायन है डायन मुझे कहा जाएगी, और वो कुलबीरा वो भी तो उसी की सुनता है, दोनों कूटते हैं मुझे, खाना भी नहीं देते, पानी पीने पे भी बस मारते हैं।
3: अरे भोली बेटे,
0: डॉक्टर साहब रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दफा मर जाओ।
3: अरे मारते क्यों है इतनी प्यारी बहू को, ये देखो देखो हमारी बिटिया को, कितनी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें हैं, काले भंवर बाल, सेब से गाल।
0: कुलबीरे की माँ कहती है सुंदर होना माड़ी गल है।
3: अच्छा?
0: गंदी बात। और वो चूल्हे की लकड़ी से रोज मेरी पीठ बाजू पैर जहाँ मौका मिले ना बस दागती रहती है।
3: बेटे सब जख्म ठीक हो जाएंगे, सब इलाज हो जाएगा, तू अभी छोटी है ना, फिर जवान है ना, जल्दी अच्छी हो जाएगी।
0: पर डॉक्टर साहब दिल के जख्मों का क्या होगा?
3: वो देखो बेटा, हम कुलबीरे को समझाएंगे, तुम अच्छी हो जाओ, और हम उसकी माँ को भी डराएंगे, देखते हैं कैसे मारेगी हमारी बेटी को।
0: आपकी बेटी?
3: हाँ हमारी बेटी।
0: मैं तो नतुशा की बेटी हूँ, उसने दूसरी औरत कर रखी है, और वो उसे किश्तवाड़ ले गई।
3: अच्छा?
0: उसके बहुत से बच्चे हैं वहाँ, मुझे मेरा बाप नहीं जाता, कहता है मैं मनुज माँ को खा गई।
3: छी छी छी छी, कितनी गलत बात है। डॉक्टर मल्होत्रा
8: जी,
3: टेक हर बीपी एंड शो मी हर फाइल एंड यू कैन गिव ए स्मॉल डोज, ओके? थोड़ा इसे आराम की सख्त जरूरत है।
8: सिस्टर।
9: यस डॉक्टर।
8: फाइल दो डॉक्टर साहब को और इंजेक्शन रेडी करो।
9: नहीं नहीं नहीं नहीं, सुई नहीं, सुई नहीं, सुई नहीं।

0: देखो भोली, तू बेटे हाथ से मेरी बेटी हो, खुदा गवाह है ईद के दिन मैं तुम्हें अपनी बेटी कबूल करता हूँ। मेरे सिर्फ एक लड़का है, वो भी मेरे पास नहीं रहता। हाँ
1: नहीं नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं, मैं मनहूस हूँ।
0: नहीं बेटे,
1: मुझे बेटी मत बनाओ, मुझे अपनी बेटी मत बनाओ, मुझे मुझे मार दो।
0: नहीं बेटे नहीं, देखो आज के मुबारक दिन ये कभी नहीं कहते, आज ईद है बेटा। हाँ
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब आपको ईद मुबारक।
0: अब्बा जान कहो बेटे।
1: अब्बा जान,
0: दैट्स राइट। ये लो मिश्री, इलायची, ये तुम्हारी ईदी है भाई। ठीक हो जाओगी तो और ढेर सी चीजें मिलेंगी तुम्हें अम्मी से। हाँ वो भी खुश हो जाएगी एक बेटी पाकर। अपने लड़के की जुदाई में हमेशा रोती रहती है।
2: डॉक्टर साहब आप भी कमाल करते हैं, आप ही ने तो उन्हें बाहर पढ़ने भेजा है।
0: अब डॉक्टर मल्होत्रा
2: जी,
0: इसे मिलने कोई नहीं आता है
2: जी।
0: आई मीन कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी।
3: डॉक्टर पहले दो दिन एक ओल्ड लेडी आया था।
0: अच्छा।
3: बोला मदर इन लॉ है वो, इसका कान का बाली वो गोल्ड इयररिंग निकाल ले गया, फिर नहीं आया।
0: गुड हेवंस डॉक्टर
2: जी,
0: नाउ शी विल बी ऑल राइट। प्लीज कम हियर
2: जी,
0: प्लीज कीप अ वॉच ओवर हर सिस्टर।
3: यस डॉक्टर,
0: लेट मी नो इफ शी इज अपसेट और डिप्रेस्ड, सेम ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू। ओके डॉक्टर।
2: यस,
0: और प्लीज थोड़ा आप ध्यान रखें। ओके
2: यस डॉक्टर।

0: बस भोली बस कर, सारे पर्दे आज ही नहीं सी डालने।
1: हाँ अभी मैं खाली बैठकर बस रोज रोज कोरमा पुलाव नहीं उड़ा सकती। हाँ मोती हो जाऊंगी आपकी तरह।
0: अच्छा आज तो तुझे मिठाई भी खानी पड़ेगी। 10,000 रुपए में तुझे खुला मिल गया।
1: क्या?
0: तेरे कुलबीरे ने लिखकर अदालत में तुझे आजाद कर दिया सिर्फ 10,000 में। आज तो वो माँ बेटा भी जश्न मना रहे होंगे।
1: गिद्ध है गिद्ध, मेरी लाश पर से बुढ़िया सोने की बाली और अंगूठी ले गई।
0: अरे छोड़ अब उनकी बातें, अब तो तू मेरी बेटी है। क्यों है ना
1: अम्मी जान?
0: अरे बालिया क्या, तेरे लिए झुमके और चेन का ऑर्डर दिया है। अच्छा चल चल उठ उठ, अब ये सिलाई बंद कर। तो तेरे सिर में थोड़ा तेल घिस दो, सारी जुल्फें पेशानी पे फैली हैं। पता नहीं तुझे दिखाई कैसे देता है।
1: अम्मी मैं तो तुम्हारी गुलाम हूँ, जब जो कहोगी जान की बाजी लगा कर
0: मुझे
1: पूरा करूंगी।
0: अब ये लाड़ प्यार ना अपने दूल्हा को करियो।
1: क्या फिर दूल्हा? अभी तो कहा आजाद करा दिया।
0: अरे अब के गवार शराबी कुलबीरा नहीं, अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए राजकुमार ढूंढा है जो उसे राज कराएगा।
1: अम्मी मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मुझे रूखी सूखी खाकर यही कहीं कोने में पड़ी रहने दो ना, निकालो मत यहाँ से।
0: हाय निकाल कौन रहा है बच्ची को, हाय तेरा ब्याह कर रहे हैं बुद्धू। तेरा जाना पहचाना लड़का है, खुद मांग रहा है तुझे।
1: नहीं अम्मी,
0: यहाँ आसपास ही रहेगी, यहाँ भी आती जाती रहेगी।
1: मैं एक बार कुएं में गिरकर देख चुकी हूँ, डॉक्टर अब्बा ने मुझे नया जन्म दिया है। अम्मी हमें आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, सीना पे रोना काटना तराशना सब सिखाया है। अम्मी अम्मी अम्मी मैं यही रह के आपकी सेवा करूंगी। हाँ आपकी सेवा।
0: और उधर जो डॉक्टर मल्होत्रा दीवाना हुआ जा रहा है, तेरे बिना उसका एक एक पल भारी गुजरता है, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने करके चक्कर लगाता है।
2: अरे भाई सकीना कहाँ हो, जरा गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ, नमक वाली तो मलाई डालकर, तिल के बड़े भी खिलाइएगा भाई, हम थक गए हैं।
3: आदाब भाभी जान।
0: जीते रहो।

0: डॉक्टर मल्होत्रा तो मिठाई लेकर आए हैं भाई आप लोगों का मुंह मीठा कराने।
1: अच्छा?
0: हमें तो अपना नमक ही भला।
2: ये लीजिए महाराज बाजार की मिठाई और आदू का केक भी। बस अब आप चाय का इंतजाम कर लीजिए।
1: हाँ, जरूर जरूर। अरे सुभाना, हिद्रा, आओ भाई, डॉक्टर साहब आ गए हैं। नमकीन चाय का समावार ले आओ, तिल बड़ा और बाकर खाने भी लाना।
3: बोली, जरा पेटे लगा मैं इस पे।
4: मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पीनी चाय।
0: मिठाई भी नहीं खाओगी?
4: नहीं।
0: तो सीधे सगाई की दावत ही उड़ाओगी हैं?
4: अबू, अबू आप चिढ़ाओगे ना, तो मैं फिर से कूद जाऊंगी हारी पर्वत से। हाँ।
0: अरे ना बाबा ना, एक बार कूदी तो मेरा सबसे जहीन डॉक्टर गया काम से, और दोबारा कूदी तो ना जाने कौन अपना दिल दिमाग खो दे। अरे शैतान की हाला, चुपचाप लगन करवा लो और हमारा बोझ हल्का करो।
4: अच्छा जी, मैं बोझ हूँ? मैं बोझ हूँ?

0: अब्बा जान।
1: हैं?
0: लीजिए सूप तैयार है।
1: अरे सूप भी बना लाए? भाई तेरा जवाब नहीं भूली।
0: सूप पी लीजिए तो आपको ईद का तोहफा दिखाओ। बड़ौदा में कई दिन लगा के तैयार किया है।
1: अच्छा मेरे लिए?
0: और क्या, अभी आपके शागिर्द भी आते होंगे। दो तीन पुराने पेशेंट आए हैं श्रीनगर से, वो भी आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा। बेचारे यहाँ आ गए, दो दिल्ली में है एक शिमला में रहता है। श्रीनगर में तो सारा कारोबार ही चौपट है।
1: हाँ बेटा,
0: कहाँ वहाँ आलीशान दुकानें थी और अब यहाँ फेरी लगाते हैं। एक टीचर बन गया। अबू जरा देखिए ऊपर, ये इधर इधर रोशनी में।
1: माशाल्लाह तुमने बनाया है भोली।
0: हाँ बजान, ठीक काला है ना, कैसा है जानवास?
1: अरे बहुत खूबसूरत है, पाक और नेक, बिल्कुल तेरी तरह।
0: बुजान।
1: हाँ बेटा, काश काश तेरी माँ सकीना सिद्धा होती।
0: नहीं अब रोना मत, रोना नहीं, आज के दिन बस खुश रहना है। हाँ
1: हाँ बेटे,
0: हाँ वो खुश रहना है। वो जहाँ भी है उनका साया हम पर है।
2: ईद मुबारक डॉक्टर साहब।
1: ईद मुबारक।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी।
3: ईद मुबारक।
1: आपको मुबारक।
3: शिमला से आपके लिए आलू और खोबानी लाया हूँ।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
4: अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर।
1: वालेकुम अस्सलाम।
3: ईद मुबारक
1: आपको भी।
3: ये थोड़ा तबर्रुक लाया हूँ आपके।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से तो है ना?
1: दुआएं हैं आपकी।
3: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया शुक्रिया।
5: सलाम हस डॉक्टर साहब।
1: सलाम हस, सलाम हस।
5: क्या बात है, आप बड़े कमजोर हो गए हैं। अरे कभी हमें भी कोई खिदमत का मौका दें, अब हम भी यही हैं दिल्ली में।
1: अरे मियां जरूर जरूर।
0: मैं सबके लिए शरबत लाती हूँ।
6: डॉक्टर साहब यहाँ तो बला की गर्मी है।
1: जी हाँ।
7: और भाई ये मिठाई भी,
8: ये भी तो खिलाओ सबको।
1: अरे भाई डॉक्टर, ये किस खुशी में?
6: भाई एक तो ईद के मुबारक दिन की खुशी में, और दूसरे आपकी बेटी के इस नलायक शोहर के दिल्ली तबादले की खुशी में।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
6: अब ये भोली रोज आपको बोर किया करेगी। हा? अकेले नहीं रहेंगे आप।
0: लीजिए बजान, मुंह खोलो,
1: ये लो
0: ताजे रसगुल्ले हैं।

सर्वश्री केदारनाथ, सुनीता ठुकराल, जितेंद्र त्रेहन, अजय मनचंदा, डी बी नंदा, राजेंद्र वर्मा, राजीव अरोड़ा, जगदीश दुआ, रामवतार शर्मा, कुलदीप अख्तर, के नरूला, संदीप खत्री, शिखा भटनागर और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

जानामाज। भी आप श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए उत्तराखंड के लोकगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं वीना तिवारी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

वीना तिवारी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के बाद आइए गढ़वाली लोकगीत का आनंद लेते हैं। कलाकार हैं अंजानी काला और मीनाक्षी काला।

उत्तराखंड के लोकगीत। इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं। तो आपको सुनवा रहे हैं अब कुमाऊनी लोकगीत, कलाकार हैं भुवन चंद्र आर्या और साथी।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर

0: रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: देव जी, प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: अयोध्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश

मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 106.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में मडुआ एवं झुंगरा की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह भिंडा।
1: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में मड़ुआ एवं झंगोरा की वैज्ञानिक खेती। श्री अन्य मिलेट्स फसलें देश के शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय खेती और जनजातीय खेती का अभिनंग रही है। मिलेट्स या मोटे अनाज जिसमें वार्षिक घास वाले छोटे बीज आकार के पौधे शामिल किए जाते हैं। एक फसल समूह है जिसमें ज्वार, बाजरा, मड़ुआ जिसे हिंदी में रागी भी कहते हैं तथा अन्य मोटे अनाज जैसे झंगोरा जिसको मादिरा या सावा के नाम से जाना जाता है, कोणी, चीना, कुटकी एवं कोदो इत्यादि फसलें आती है। ये फसलें मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान उगाई जाती है। अब बात करें कदन शब्द की, जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है निनंदितान अर्थात गरीब आदमी का भोजन। पहले इन फसलों को गरीब आदमी का भोजन माना जाता था लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इन फसलों को गरीब आदमी का भोजन कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आज पूरे विश्व में इन फसलों के पोषक गुणों के कारण इनकी अच्छी खासी मांग बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में हुए सौदों से इनकी उच्च गुणवत्ता के विषय में देश और दुनिया में ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इनकी पोषण व खाद्य सुरक्षा में महत्ता के कारण इनको पोषक अनाज पोष्ट धान्य न्यूट्री सीरियल की संज्ञा भी दी गई है। ये फसलें अपने उच्च पोषक मान तथा शुष्क जलवायु सहिष्णुता के कारण विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में खाद्य व पोषण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य में इनकी जलवायु तन्यक प्रवृत्ति के कारण महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इन फसलों की महत्ता और भविष्य में अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया है जिसके बाद देश और दुनिया में इन फसलों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिलेट्स है श्री अन्न है उसमें मड़ुआ व झंगोरों का प्रमुख स्थान है। उत्तर भारत में उत्तराखंड ऐसा अकेला राज्य है जहाँ इन फसलों की खेती बहुत आयत में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग 70% क्षेत्रफल में ये फसलें उगाई जाती है। वर्षाधारित क्षेत्रों एवं कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में उगाए जाने के कारण इनका महत्व पर्वतीय खेती में और अधिक बढ़ जाता है। उत्तराखंड में परंपरागत मिलेट्स या श्री अन्न फसलें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न केवल विषम भौगोलिक परिस्थिति में अच्छी पैदावार देती है साथ ही पूरे पर्वतीय परिस्थिति की

स्थायित्व भी प्रदान करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें विपरीत परिस्थितियों में कम लागत पर औसत उत्पादन देने की क्षमता रखती है, अर्थात इनमें सूखा, गर्मी आदि सहन करने की अधिक क्षमता होती है, साथ ही इनमें कीट व रोग भी कम लगते हैं। मड़ुआ एम झंगोरा में पोषक तत्वों की मात्रा हमारे मुख्य खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का से अधिक होती है। साथ ही इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रतिआक्सीकारक, फाइटोकेमिकल्स, पॉलीफिनोल्स और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह के विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये फसलें ग्लूटेन रहित होती है, जो कि ग्लूटेन संबंधी आद्र रोग से पीड़ित लोगों के लिए वरदान है। इन फसलों का ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होने के कारण रक्त में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करती है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह की समस्या नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही इन फसलों में एक आयरन, जिंक व अन्य खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। मड़ुए की बात करें तो इसमें विशेष रूप से कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके नियमित सेवन से हड्डियों को मजबूती बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही श्री अन्न या मिलेट्स फसलों में रेसे या फाइबर की अधिक मात्रा होने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल

की समस्या नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही इन फसलों में एक आयरन, जिंक व अन्य खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। मड़ुए की बात करें तो इसमें विशेष रूप से कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके नियमित सेवन से हड्डियों को मजबूती बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही श्री अन्न या मिलेट्स फसलों में रेशे या फाइबर की अधिक मात्रा होने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ ही जिससे हृदय रोगों को रोकने में मदद मिलती है। इन सब कारणों से विगत वर्षों में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जागरूकता के कारण इनका विभिन्न व्यावसायिक खाद्य उत्पादों में उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे इनकी लोकप्रियता व मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं कि इन फसलों की वैज्ञानिक खेती किस तरह से की जा सकती है। तो वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई व भंडारण तक कई तरह की उन्नत उत्पादन तकनीकें शामिल की जाती है, जिनका ज्ञान किसान भाइयों को होना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। इसके लिए पूर्व फसल की कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार एक या दो जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। खेत से खरपतवारों को कुटले आदि की सहायता से निकालना चाहिए। मड़ुआ सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, फिर भी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दोमट व बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। बुआई के समय की बात करें तो बुआई का समय जो है ऊंचाई के अनुसार भिन्न हो सकता है। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई का जो उपयुक्त समय है वो जून प्रारंभ से जून मध्य तक, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मई अंत से जून मध्य तक, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो बुआई का उपयुक्त समय है वो अप्रैल अंत से मई मध्य तक का माना जाता है। आमतौर पर मड़ुआ व झंगोरा की बुआई छिटकुआ विधि से की जाती है, जिसकी वजह से पौध संख्या एक समान व समुचित नहीं रहती। इसके अलावा निराई गुड़ाई में भी असुविधा होती है। इस कमी को दूर करने के लिए इनकी बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। दो पंक्तियों के बीच की दूरी मड़ुए के लिए 20 सेंटीमीटर, झंगोरे या सांवा के लिए 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज दर की बात करें तो इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम इन दोनों ही फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर पर्याप्त माना जाता है। बुआई के पश्चात 3 से 4 सप्ताह के बाद प्रथम निराई के समय अतिरिक्त पौधों की छटनी करके पौध से पौध की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीजों को बुआई से पूर्व चरित करना चाहिए। इसके लिए कार्बनडाइजिन से उपचार के लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर काम में लेनी चाहिए। अगर जैविक खेती के अंतर्गत खेती की जा रही है तो उसके लिए ये उपचार जो है वो 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से सूडोमोनास तथा ट्राइकोडर्मा के मिश्रण से करना चाहिए। बीजोपचार के बाद 20 मिनट तक बीजों को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। उसके पश्चात ही बुआई प्रातःकाल या सायंकाल के समय करनी चाहिए। अब बात करेंगे इन फसलों की उन्नत प्रजातियों की। तो श्री अन्न फसलों का क्षेत्र के अनुसार सही प्रजाति का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिक उपज के लिए उन्नत प्रजातियों के प्रमाणित बीज ही किसानों द्वारा बोने चाहिए, साथ ही बुआई कतारों में करनी चाहिए। इसके लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मड़ुआ एवं झंगोरा की कई जल्दी पकने वाली, रोग प्रतिरोधी तथा अधिक उपज वाली प्रजातियां विकसित की गई है। इन प्रजातियों की पैदावार स्थानीय प्रजातियों की तुलना में लगभग 2 गुनी होती है। मड़ुए की उन्नत प्रजातियों में वीएल मड़ुआ 352, वीएल मड़ुआ 347, वीएल मड़ुआ 374, वीएल मड़ुआ 379 और वीएल मड़ुआ 400 मुख्य है। साथ ही अजैविक या ऑर्गेनिक खेती के लिए वीएल मड़ुआ 378, वीएल मड़ुआ 380 जैविक हेतु मुख्य प्रजातियां विकसित की गई है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सफेद मड़ुए की किस्म वीएल मड़ुआ 382 भी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। झंगोरे की बात करें तो इसके लिए संस्थान द्वारा वीएल मादिरा 254, वीएल मादिरा 207 एवं वीएल मादिरा 172 प्रजातियां उत्तराखंड के सभी झंगोरा उत्पादक क्षेत्रों हेतु उपयुक्त पाई गई है। आमतौर पर मड़ुआ में झंगोरा की खेती बिना उर्वरक की जाती है। अच्छी उपज के लिए उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर सही रहता है। अच्छी उपज के लिए 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेना चाहिए। बुआई से पूर्व नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा को जुताई के समय खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा पौधों के जमने के लगभग 3 सप्ताह के पश्चात जब प्रथम निराई की जाती है तब समान रूप से बुरकाव करना चाहिए। गोबर अथवा कंपोस्ट खाद की बात करें तो इसके लिए 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा का प्रयोग अच्छी उपज प्राप्त करने में मददगार होता है। इसके अलावा मड़ुए की खेती रोपाई विधि से भी की जा सकती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। पौधशाला में जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाए तब रोपाई करनी चाहिए। रोपाई पंक्तियों से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जून के 3रे सप्ताह से जुलाई के 1म सप्ताह तक रोपाई कर सकते हैं। वर्षा होने के तत्काल बाद ही रोपाई करना अच्छा माना जाता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए 2 निराई गुड़ाई आवश्यक होती है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के बीच से 25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 दिन पश्चात करनी चाहिए। श्री अन्न फसलों के मुख्य रोग और उनके नियंत्रण की बात करें तो मड़ुए का जो मुख्य रोग है वो ब्लास्ट या प्रद्वंस रोग है। इसमें पत्तियों पर आंख व नाव के आकार के जलसिक्त धब्बे बन जाते हैं जो बीच में राख व किनारों पर भूरे रंग के होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित

को प्राथमिक अवस्था में निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कार्बन डाइजीम से उपचारित करना चाहिए। झंगोरे की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है कंड या स्मट रोग है। इस रोग का प्रभाव मुख्यतः बालियों पर दिखाई देता है, जिसके कारण संक्रमित अंडाशय गोल व रोएदार हो जाते हैं। इनका आकार सामान्य दानों की तुलना में 2 से 3 गुणा हो जाता है। इसके अलावा अनियमित आकार के काले भूरे रंग के धब्बे जो है वो पौधे के तने तथा गांठों पर भी पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किसान भाइयों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जो रोग प्रतिरोधी प्रजाति है वो है PR1, BL Madeira 207 और BL Madeira 172। बीजों को बुआई से पूर्व 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कार्बन डाइजीम से उपचारित करने से भी इस रोग में रोकथाम में मदद मिलती है। अब इन फसलों के मुख्य कीटों की बात करें तो कुरमुला जो है वो मड़ो व झंगोरा दोनों ही फसलों का मुख्य कीट है। इस कीट के सफ़ेद किडार जमीन के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है और खींचने पर आसानी से उखड़ जाता है। इसका नियंत्रण 2 विधियों से किया जा सकता है। पहला VL कुरमुला ट्रैप यानी VL प्रकाश प्रपंच, ये संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा वयस्क कीटों को आकर्षित कर नष्ट किया जाता है। अगर इसका उपयोग सामुदायिक रूप से किया जाए तो कुरमुला कीट को पूर्णतः नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है जैविक विधि द्वारा, जिसमें संस्थान के द्वारा एक अत्यंत प्रभावशाली जीवाणु वैसिलस सीरियस के स्टेन WGPSV2 को चूर्ण के रूप में बनाया गया है। इसके पाउडर को गोबर की खाद में मिलाकर डालने से कुरमुला कीट को लंबी अवधि के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करेंगे इन फसलों की कटाई व मड़ाई के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब फसल पक जाए तो कटाई उचित समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा दानों के झड़ने की संभावना रहती है। फसल काटने के उपरांत 3 से 4 दिन तक बालियों को अच्छी तरह से सूर्य के प्रकाश में सुखाने के पश्चात मड़ाई करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों द्वारा जो मड़ाई व घाई जो है इन फसलों की अत्यंत कष्टदायक होती है, इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए विवेकानंद संस्थान द्वारा विवेक मिलेट थ्रेशर एवं पल्लर का विकास किया गया है, जिसके प्रयोग से 1 घंटे में 60 से 80 किलोग्राम मड़ुए की थ्रेशिंग या मड़ाई की जा सकती है। साथ ही मड़ुए की पर्लिंग जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से की जा सकती है। झंगोरे के दानों की मड़ाई 60 से 80 किलोग्राम एम कुटाई डी हलिंग या जो चावल निकालने की जो दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से की जा सकती है। प्रभावी थ्रेशिंग हेतु दानों में नमी 15% से कम होनी चाहिए। अब बात करें कि इन फसलों का भंडारण किस तरह से करने चाहिए। अनाज का भंडारण से पूर्व दानों को खुली धूप में अच्छी तरह से सुखाकर जूट के बोरों अथवा

खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र सिंह भिंडा से जानकारी श्रोता अभी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 2:45 पर आप सुनेंगे एक ही फनकार। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज फनकार होंगी मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत के तहत आज सुनिएगा जीवन का माधुर्य संगीत। 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी किए जाने के अवसर पर सजीव प्रसारण। ये प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा आज 3:55 पर। ये थे सभा के शेष कार्यक्रम और अब सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00। शाम 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस विषय पर इस श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमती गीतांजलि हजारिका और श्री सुंगवादन नर्जरी से भेंट वार्ता आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अलावा 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विवेक कर्महे का ठुमरी और दादरा गायन। ये सभी कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले होंगे। 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। 5:05 पर शैलस्वर में आज कलाकार होंगे भूपेंद्र भौरियाल। 5:25 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विश्व शरणार्थी दिवस। खेल जगत और आज का इतिहास भी बच्चे सुनेंगे। इसके अलावा आज की बात में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से युवाओं को लाभ, इस विषय पर भी युवा साथी जानकारी हासिल करेंगे। 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा विश्व शरणार्थी दिवस पर, जीवन शैली से उपजी बीमारियों का योग से उपचार, इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आप सुनेंगे। भक्ति संगीत 6:41 पर, 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में मोटे अनाज का उत्पादन विषय पर, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में जानकारी लीजिएगा। आज की सलाह होगी कृषि में सूक्ष्म जीवों की भूमिका विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पशुओं में टीकाकरण क्यों जरूरी विषय पर कमल दुर्गापाल से भेंट वार्ता भी प्रसारित होगी। 7:40 पर फिल्म संगीत सुनिएगा और 9:15 पर इंद्रधनुष में भी फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस पेश किया जाएगा 8:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है एक ही फनकार। श्रोतों आज फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ। सुषमा सेठ एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। कई दशकों के करियर के साथ वो इंडस्ट्री में सबसे सम्मानित कलाकारों में शुमार हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, कौशल और अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। आज 20 जून सुषमा सेठ का जन्मदिन है तो आज उन्हें हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी अभिनीत फिल्मों के गाने आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, 20 जून 1936 को दिल्ली में जन्म हुआ सुषमा सेठ का। और उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो दिल्ली से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग का स्वाद बचपन से ही उन्हें लग गया था, क्योंकि उनका परिवार भी कला के क्षेत्र में रुचि रखता था। लगभग 20 साल तक उन्होंने थिएटर किया, वहीं कुछ समय बाद दूरदर्शन के सीरियल हम लोग में उन्होंने कदम रखा। और इस सीरियल में उन्होंने इमरती देवी का जो किरदार निभाया, तो वो उस किरदार के जरिए घर घर में पहुंच गईं और दादी के रूप में मशहूर हो गईं। हालांकि सीरियल की कहानी में एक ऐसा भी मोड़ आया था जब दादी का किरदार समाप्त हो रहा था, पर फैंस को ये बात जब पता चली तो उन्होंने दूरदर्शन को खूब सारी चिट्ठियां लिखीं और दादी का किरदार ख़त्म नहीं करने के लिए गुजारिश की। इस बात का जिक्र सुषमा सेठ जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में दिया था। सच, उनकी ऐसी दमदार एक्टिंग थी कि दर्शक उन्हें बेहद चाहते थे।

तो श्रोताओं, सुषमा सेठ ने छोटे पर्दे पर अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी और सुषमा जी के फिल्मी पर्दे पर पहुंचने की बात करें तो उन्हें वहां पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा था। जब वो 42 साल की आयु की थी तभी सुषमा सेठ को पहली बार जो फिल्म मिली थी वो फिल्म थी 1978 में प्रदर्शित जुनून। श्याम बेनेगल के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में अभिनय करने के बाद सुषमा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये वो दौर था जब बूढ़ी और बेबस माँ के तौर पर माँ की भूमिका नज़र आती थी। तो सुषमा सेठ जी ने अकड़ू, अमीर दादी माँ या फिर माँ की छवि को इस तरह से पेश किया कि उनकी एक अलग तरह की छवि फिल्मों में नज़र आई। इसके बाद उन्होंने सिलसिला प्रेम रोग, तवायफ, नागिन, निगाहें, दीवाना, चांदनी, धड़कन, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो जैसी कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया।

तो श्रोताओं, सुषमा सेठ जी ने ऋषि कपूर से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, प्रीति जिंटा समेत कई सितारों के साथ काम किया। कभी वो दादी बनी, कभी माँ बनी, कभी नानी, कभी ताई, कभी चाची। विविध किरदारों के जरिए वो हमेशा दर्शकों के बीच अपनी खास उपस्थिति दर्ज करवाती रहीं। आज भी वो बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सक्रिय हैं। यही हम उनके लिए कामना भी करते हैं कि वो ज़िंदगी में अपनी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सक्रिय रहें और खूब एंटरटेन आगे भी करते रहें अपने विविध किरदारों के ज़रिए। और आज एक ही फनकार में फनकार रहीं श्रोता, जैसा कि जानते हैं सुषमा सेठ, तो एक ही फनकार का सफ़र यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में के फनकार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस संगीत के माधुर्य से भरे कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन का माधुर्य, जीवन का आनंद, जीवन का रंग तरंग, जीवन का उल्लास, हर्ष, खुशियां सब समाहित हैं संगीत में। संगीत है तो जिंदगी में रस है, राग है, रंग है और मीठा सा संगीत है। तभी तो हरिवंश राय बच्चन जी क्या खूब कहते हैं, कहते हैं तारे गाते हैं, सन्नाटा वसुधा पर छाया, नभ में हमने कान लगाया, फिर भी अगणित कंठों का ये राग नहीं हम सुन पाते हैं, कहते हैं तारे गाते हैं। सच, ये पंक्तियां हृदय को स्पंदित कर जाती हैं, कहती हैं सृष्टि में चारों ओर जो घटित हो रहा है वो सब संगीतमय है। ऊपर आसमान में तारों का संगीत, धरा पर सांसों का गीत, भंवरे की गुनगुन, सपनों का गीत, हवाओं का गीत, मिलन का गीत, बिछोह का गीत, गीत संगीत चहु ओर, चलो गुनगुनाते हैं मीठा सा गीत, मौसम का सुर में सधा ये प्यारा सा संगीत।

श्रोताओं, ब्राजील के मशहूर लेखक पाउलो कोहलो कहते हैं, जो ही आप किसी जंगल में प्रवेश करते हैं, आप एकदम अलग एहसास से भर जाते हैं। जंगल की आवाज़ अलग संगीत पैदा करती है, नदियों की कलकल में अलग संगीत, झरने जब ऊपर से नीचे अपनी धाराओं के प्रवाह में गिरते हैं तो उनका गर्जना से भरा अलग संगीत बिखर जाता है। हल्की फुल्की बारिश की फुहारें जब पड़ती हैं तो बूंदों की टप टपाहट की ध्वनि दिलो दिमाग को सुकून से भर देती है। भंवरों की गुनगुन, झिंगुर की झाए झाए, पपीहे की पीहू पीहू, कोयल की कूहू कूहू, जंगल का संगीत कितना मधुर है। और जापान के लोग तो ये भी कहते हैं, यदि आप अवसाद से या मानसिक तनाव में हैं तो जाइए ना जंगल में। वहाँ जो सुकून मिलता है, हरे भरी वादियों में जो एक अलग एहसास इंसान में भर जाता है, हमें तरोताज़ा कर देता है, वो अपने आप में अनुपम होता है। इसके लिए ज़रूरत है जंगल में जाने की, और जंगल को बचाना है, हरियाली से भरना है, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तभी तो हम ये प्यारा सा सुकून भरा एहसास कर पाएंगे, इस प्रकृति के अलबेली संगीत को सुन पाएंगे, है ना।

श्रुतों, संगीत हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है यह हम सभी जानते हैं। संगीत के बिना जिंदगी कितनी बेजान, कितनी अधूरी हो जाएगी, कल्पना कीजिए। साथ शुरू से ही जिंदगी की मौसीकी गुलजार है। संगीत है तो सुकून है, आराम है, भावों के विविध आयाम है। जिंदगी हर पल संगीत के सुरों में ही ढली है और जिंदगी की मिठास का एक खूबसूरत समा सजता है। संगीत से ही, साथ सुरों से ही बंधा है जीवन संगीत।

शुदों जिंदगी के ताने बाने, जिंदगी की ढेर सारी खुशियाँ, उल्लास, उमंग, त्योहार, पर्व, कोई भी अवसर हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में वाबस्ता हो, सभी संगीत से ही आह्लाद भर देते हैं। और संगीत हमें यही सीख देता है कि हमेशा जिंदगी में गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, हंसते हंसाते बिताएं हर पल, और संगीत के उल्लास के साथ घुल मिल जाएं, कुछ इस तरह।

जी हाँ श्रोताओं, सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराने गुनगुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, पत्थरों से चाहे आसमान के खूबसूरती में, तारों में, चांद में, या फिर प्रकृति के कण कण में, हर जगह संगीत के तार छिड़ते रहेंगे और हम प्रकृति का संगीत और जिंदगी का संगीत गुनगुनाते रहेंगे कुछ ऐसे ही।

श्रुतों, शांत सुरम्य वादियों में कभी आपने शांत चित्त होकर महसूस किया है? क्या अलौकिक शांति से हमें भरपूर कर देता है? प्रकृति के कण कण के संगीत में एक अलग ही एहसास समाया रहता है। प्रकृति के इस संगीत में प्रवाह है, एक अजीब सा अनूठा अनमोल सुख है, जादू सा है। फूलों, पत्तियों, घास, नदियों, पहाड़, पंछियों, इन सब का अपना एक मिठास भरा मधुर मधुर संगीत है। सभी की एक लय है, एक संगीत है, सुर है, तराना है, और फिर ये खूबसूरत गाना हमें आपको सुनाना है।

तो संगीत के सुरों में सजा सदाबहार फिल्मी गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से। श्रोताओं, कहते हैं मोड़ बहुत है जीवन की राहों में, अनदेखे अनचीन है मोड़, सपाट रास्तों से उपजी ऊप तोड़ते हैं मोड़, मोड़ पर साफ दिखाई देता है तय किया रास्ता, आने वाला दृश्य मोड़ पर बदल जाती है हवा की दिशा, धूप का पहलू, बारिश का कोण, एक नए रास्ते की संभावना भी इन मोड़ों से ही शुरू होती है। और श्रोताओं, इन्हीं मोड़ों पर हम जीवन संगीत गुनगुनाते हैं, कभी जमी के साथ, कभी आसमां के साथ, कभी अपनों के साथ, कभी रोम

श्रोताओं, कहते हैं ना, स्वर और लय अनादि हैं, अनंत है। स्वर दृश्य नहीं, अदृश्य है। किसी ने इसे देखा नहीं, छुआ नहीं। सृष्टि के उदात्त भाव देखे भी कहाँ जा सकते हैं, ये तो बस महसूस किए जा सकते हैं। कभी प्रेम की तरह, कभी ईश्वर की तरह, कभी प्रार्थना की तरह, कभी आनंद, कभी विश्वास, तो कभी प्यार में खूबसूरत तरानों की तरह।

श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी प्यार का गीत है, तरन्नुम में ढला है, अपनों के बीच पला है, कभी मुस्कुराता कभी आंखें नम कर जाता, कभी बिन कहे बहुत कुछ कह जाता, कभी मौन की भाषा बन जाता, कहाँ तक कहें, सबकी अपनी अपनी जुबानी है, अपने अपने एहसास है। बहरहाल, बस चलिए, जिंदगी का एक प्यारा सा गीत आपके साथ हम भी गुनगुनाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी प्यार का गीत है। कैसे भी लम्हे आए, बस गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए। और फिलहाल इस समय अंजू पांगति को इजाज़त दीजिए सदाबहार फिल्मी गीत से। नमस्कार।

0: पश्चिम बंगाल, जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, द रिजॉल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की

0: जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information, Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047, that's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District

0: Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल की विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat.

0: We see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके,

0: आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered. You are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer. You can check your bank account. You can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back. What is this drone? What is this thing flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव आज से एक जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो और डिजिटल जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Sri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Sri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति
1: जी हाँ बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
2: और मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
2: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई
0: सिद्धार्थ यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन इट्स नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ लेगेसी ऑफ हेरिटेज ऑफ स्वीटनेस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम भारत केसरी लह प्रणाम स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয় যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না প্রধান সেবক বলেন উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market, all these things have been

0: released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for. Everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjawan mukhyamantri, शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं।

भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था

जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडा

के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के

से वादा किया था वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष का शुरू हो गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधामोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी,

गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है

0: शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: नाम खुदा का ले जरा सबक शुरू।

आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में सोहनी महिवाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था अरन बख्शी ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। और अब इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सब दगड़ियों के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार। दगड़ियों आज विश्व शरणार्थी दिवस विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून हूँ मनाई जा। यह दिवस उन लाखों लोगों के सम्मान में मनाई जा जिनके युद्ध हिंसा उत्पीड़न प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारण अपन घर छोड़कर दूसर स्थानों में शरण ली पड़े। दगड़ियों संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2000 में 20 जून हूँ विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनोनक निर्णय करो। यह उद्देश्य शरणार्थियों समस्याओं प्रति विश्व समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अधिकारों सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन के लिए समर्थन जुटवा। दगड़ियों शरणार्थियों के भोजन आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार जैसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई नंतिम शिक्षा है वंचित है जानी और परिवारों के असुरक्षा तथा मानसिक तनाव झेलन पड़ो। मानवता के आधार पर हमन के शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और सहयोगक भाव रखना चाहिए। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मिलबेर पुनर्वास शिक्षा और सुरक्षा लिए प्रयास करना चाहिए। दगड़े विश्व शरणार्थी दिवस उनके याद दिलूँ कि हर व्यक्ति के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। शरणार्थियों सहायता करण मानवता और विश्व शांति दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उदगड़ियों यू तो छे आप लोग दगड़ पर विश्व शरणार्थी दिवस पर बातचीत और अब कार्यक्रम में अगली सुनो दीवान करने वाला गई भी शोलो की।

0: निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाए,
0: झगड़ा मिटाए, विश्वास जगाए।
2: और देवरी कार्यक्रम में आज सुनो कैलाश चंद्र वेफी शोलो गीत।

रोटी दी छे कचूपक भात दी छे बासी रोटी दी छे कचूपक भात दी छे बासी रात दिन तेर भार भुगती चौरासी रात दिन तेर भार भुगती चौरासी कांतेरा में बुआरनी कांतेरा सोरासी कहाँ तेरा मैं बुआ रनी कहाँ तेरा सोरासी मेले ढूंढो उत्तराखंड तुले ढूंढो काशी ये तुले ढूंढो काशी माधोली मधु

करले जमुना जी को ठंड पानी सड़क की सल सड़क की सल ओड़िया निशान जैसी कंब एल मेरमुख निबोला ने तेरमुख कैल ये हिट माधुली।

हाली में थी सुआ बोई हाली में थी बोई हाली में थी सुआ बोई हाली में थी भोहणी नह जोल कुबेरल एती भोहणी नह जोल कुबेरल एती मरकल निहन सुआ पहाड़ की खेती ये हिट माधुली जरगी वाला उती करली रोपा ए हिट माधुली जरगी वाला उती करली रोपा ए धान को खाली बात मा

हसाई को रेट रेट हसाई को रेट हसाई को रेट रेट हसाई को रेट आनेरोनी दिन मास होनी रे चो भेट आनेरोनी दिन मास होनी रे जो भेट आचुईले पानी पीनू नी भरी नो पेट ये पहिट माधुली मेरे।

0: रगड़ी वाला आप लोग कैलाश चंद्र कई जो लोग की सुनो। और अब कार्यक्रम में अखिल सुनो जीवन शैली बटी उपजी बीमारियों योग बटी उपचार विषय पर योग शिक्षिका श्रीमती ज्योति पांडे रगड़ करेगी जो छेद संकलित भेंटवार्ता।
1: भेंटवार्ताओं के क्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं योग शिक्षिका श्रीमती ज्योति पांडे से। इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे योग के बारे में। तो मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग है क्या।
2: धन्यवाद पांडे जी। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि योग क्या है, और आपने जैसे परिचय सत्र में ही बोला कि शिक्षिका, तो एक प्रशिक्षु होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि योग जो है वो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है
1: जी,
2: बल्कि शरीर मन और आत्मा को संतुलित करने की एक पद्धति है। और जैसे आप भी समझते हैं कि योग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, और इसका अर्थ ही है जोड़ना और एकता को स्थापित करना, है ना। तो आप अगर इसको संक्षेप में, अगर इसको आप एक लाइन में अगर इसको समझना चाहें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि योग जो है, योग शरीर की शक्ति, मन की शांति और आत्मा की जागरूकता सुंदर संगम है
1: जी। अच्छा मैडम, आप हमें ये बताइए कि योग क्या, योग द्वारा जो हमारी जीवन शैली में बीमारियां होती हैं उनका इलाज संभव है।
2: बिल्कुल है। जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या संभव, बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहला सुख हम अपने जीवन में कहते हैं कि हम पैसा बहुत कमा लें, लेकिन जो पहला सुख है वो है आपके पास एक अच्छा शरीर का होना
1: जी।
2: स्वस्थ शरीर ही जो है वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये जो हमारी जो दैनिक आदतें होती हैं, हमारा जो खान पान है, यदि वो अच्छा है तो ये बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। यदि किसी कारणवश हमारी जो जीवन शैली अगर कुछ अस्पष्ट है तो कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं, लेकिन उन बीमारियों का योग के द्वारा हर प्रकार का इलाज जो है संभव है।
1: कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारी जीवन शैली से उपजती हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा प्रश्न आपने देखा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा खान पान बहुत ज्यादा जो है ऊपर नीचे रहता है, साथ ही साथ लेट नाइट तक हम लोग जागते हैं, मोबाइल और स्क्रीन ने हमारा जो है जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है, जीवन में कई सारी ऐसे टेंशन रहते हैं, तो दिनचर्या जो रहती है वो अनियमित रहती है, और इन सभी के कारण जो है हम देखते हैं कि जीवन में मोटापे का होना। आप देखिए, मोटापा एक आम बीमारी के रूप में जो है हम सबके ऊपर अपनी पकड़ बना रहा है। तो मोटापा है, आप इसमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज को देख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ ही हृदय रोग, हार्ट अटैक जो एक कॉमन हो गया है, इसके साथ साथ ही नींद की कमी, जो लेट नाइट तक जागना है तो अनिद्रा जिसको हम बोलेंगे, इसके साथ साथ ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, शरीर में दर्द, कई बार हम देखते हैं कि अरे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो ये सब बीमारियां जो है ये अनियमित जीवन शैली के कारण ही उत्पन्न होती है।
1: यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम योग करें तो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं।
2: बिल्कुल, यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं और आपने अपने जीवन शैली में योग को एक स्थान दिया हुआ है, तो बेझिझक आप, मैं आपसे कह पाऊंगी कि आप हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं।
1: तो मैम, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा योग करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने देखा कि हमें किस बीमारी के लिए क्या योग करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि अनियमित दिनचर्या ने हमें कई सारी बीमारियां जो है वो देना शुरू किया है, लेकिन अगर हम योग में जाते हैं तो कुछ ऐसे आसन है, कुछ ऐसे व्यायाम है जो लगभग लगभग हर जगह मल्टीपल काम करते हैं। जैसे आप मोटापे को ले लीजिए, मोटापा है, मधुमेह है, तो इन चीजों के लिए हम सूर्य नमस्कार को ले सकते हैं। भुजंग आसन एक बहुत बड़ा बढ़िया आसन जो है कमर दर्द में, मोटापे में, मधुमेह में जो है बड़ा सहायक सिद्ध होता है। इसी के साथ साथ ही आप नौकासन, धनुरासन, भुजंगासन, पवनमुक्त आसन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं
1: जी।
2: और अगर हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए अर्धमसेंद्र आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, भुजंग आसन है, धनुरासन है, ऐसे वज्रासन है। आप मोटापा देख लीजिए, जो एक सामान्य तौर पे आज समाज में फैलता जा रहा है, तो मोटापे के लिए सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, धनुरासन, नौका आसन, ये कुछ ऐसे आसन है जिससे आप करते हैं तो आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं
1: जी। मैम, ये जो आसन आपने बताए ये कब करने चाहिए, किस समय कर सकते हैं, क्या दिन में कभी भी हम ये आसन कर सकते हैं?
2: नहीं, इसके लिए तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें जब योग करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है कि मुझे उस चीज को करना है। उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब जो आपने प्रश्न किया कि किसी भी समय कर सकते हैं,

0: किसी भी समय से तात्पर्य यह है कि सुबह के समय या शाम के समय और खाने के बीच में आप 2 घंटे का अंतर रखते हुए इसको जो है आप कर सकते हैं।
1: तो मैम कितनी देर हमें आसन करना चाहिए?
0: देखिए हर एक आसन का अपना अपना समय है और कोई भी चीज हम एक्सेस में ना लेके चले। जैसे सूर्य नमस्कार है, अपने आप इसमें 12 आसन होते हैं, तो यदि आप एक क्रम में आप करते हुए जा रहे हैं और मंत्रों के साथ आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ ही किसी भी आसन के लिए 20 सेकेंड और यदि उसको क्रम में आप करते हैं, जैसे हम सिखाते हैं तो हम ग्रुप में समूह में यही चीज कहते हैं कि 10 रस के 10 10 के हम एक एक राउंड बना लेते हैं। 10 राउंड का मतलब है कि 2 मिनट, तो उसको हम जो है 3 ग्रुप में आती है 30 पेयर में उसको कराते हैं, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं।
1: जी जी मैडम, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे ये भी आसन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, देखिए अच्छी चीजों के लिए कोई उम्र नहीं होती है कि यदि आज हम ये कहें कि ये छोटा है और अगर हम ये कहें कि ये बुजुर्ग है, नहीं। आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में हम चीजें हमसे छुपी हुई नहीं है। ऐसी कई सारी वृद्ध महिलाएं, ऐसे वृद्ध पुरुष हमारे सामने आते हैं जिन्होंने लेट योगा को शुरू किया और आज बहुत संतुलित जीवन शैली को जो है वो जीवन को जी रहे हैं। ऐसे बच्चे जब शरीर तैयार हो रहा होता है उस समय बच्चों को आप एक योग के रूप में एक अच्छी आदत उसके अंदर विकसित कर रहे होते हैं, तो जब शरीर तैयार हो रहा होता है तो जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होता है और बच्चा जो है अपने शरीर को जिस रूप में चाहे उस रूप में डाल सकता है। तो यदि एक अच्छे जो केंद्र में जाए या अच्छे एक आपको जो है सिखाने के लिए एक अच्छा आपके पास ट्रेनर हो तो आप के लिए कोई ऐसी उम्र हम नहीं कहेंगे कि बच्चा करे या बुजुर्ग ना करे या नवयुवक करे, तो हर किसी के लिए योग सहायक है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि योग कोई भी कर सकता है। एक बुजुर्ग को कितनी देर तक योग करना चाहिए और एक बच्चे को कितनी देर तक योग करना चाहिए?
0: पानी जी आपने सवाल तो सही किया कि कितने देर योग करना चाहिए। अब इसके लिए कोई चीज नहीं है, इसके लिए हम क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते कि आपको इतने देर करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टेमिना 5 मिनट और मेरा 2 मिनट है, तो मैं आपको ये नहीं कह पाऊंगी कि आप 5 मिनट, तो हर बॉडी की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है और जिस स्तर पर आप कंफर्टेबल हैं आप वहां तक जाइए। अब ऐसा है कि जैसे हमने बोला कि बुजुर्ग और बच्चे की जब हम बात करते हैं तो ठीक है, जो बच्चा हमारे साथ योग करते हैं उनका जो स्टेमिना हम देखते हैं कि बहुत हाई होता है, हम उसको चीज को सिखा रहे होते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी उसको पकड़ता है, अपने व्यवहार में लाता है, उसको प्रयोग में लेकर आता है। वही जो हमारे साथ जरा उम्र के लोग आते हैं वो चीजों को अपनाते हैं पर धीरे धीरे अपना रहे होते हैं, तो जहां तक उनको लगता है कि ये चीजें उनको परेशान नहीं करेगी उन चीजों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो ये कहना कि मैं इस चीज को 5 मिनट कर रही हूँ तो आप भी 5 मिनट करिए, नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज आपको फायदा पहुंचाते जाए, आप कंफर्टेबल होकर सो करते रहे, कम से कम 60 सेकंड इतना तो आपने किसी भी आसन को आपने देना है। जैसे आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप भ्रामरी कर रहे हैं, आप कपालभाति कर रहे हैं, तो कम से कम 5-5 मिनट आपको इनको करना ही चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे धीरे जैसे चीजें आपकी आदतों में शामिल हो रही है तो फिर टाइम को आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 5 को आप 10 करिए, 10 को आप 15 करिए, तो आप ये देखते हैं देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसको करते हैं और आपको फायदा समझ में आता है, आपको उसमें आनंद आने लगता है, तो समय अपने आप ही बढ़ता चला जाता है।
1: जी मैम, आप अब चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उनसे और क्या कहना चाहेंगी योग के बारे में, क्योंकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।
0: पंडित जी इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि योग को केवल हम योग दिवस तक सीमित ना रखें, बल्कि इसको हमें अपनी प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपने जीवन का अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं, जिस प्रकार हम अपने दैनिक कार्य को करते हैं, उसी प्रकार से योग को अपने जीवन में हमें करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि योग का अर्थ है जोड़ना, योग हमारे शरीर मन से जोड़ने का काम करता है। हम इस चीज को समझते हैं कि क्या चीज हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज नहीं है, हम स्वयं में रहना सीखते हैं, तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। तो ये मेरा प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन रहेगा कि योग को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाएं और योग अपनाकर हम न केवल अपनी जीवन शैली जनित बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ सुखी और सफल जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए योग जो है वो केवल रोगों का उपचार नहीं है बल्कि स्वस्थ संतुलित और आनंदमय जीवन का आधार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए, उसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए।
1: तो मैडम आपने हमें योग पर इतनी अच्छी जानकारियां बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उदवड़ी वाला आप लोग जीवन शैली बड़ी उपजी बीमारियों का योग बटी उपचार विषय पर योग शिक्षिका श्रीमती ज्योति पांडे द्वारा करी गई उच्चेत संकलित भेंट वार्ता सुनी और अब कार्यक्रम में अगले सुन ललित मोहन पांडे गई हुई

पुदळी होला फुलो गलगलित मोहन पांडे कई सी शुद्धों की सो और अब कार्यक्रम में बाकी भी बातचीत करनो हर घर नल योजना पर दगड़ी हो पाए जीवन अब आधार छे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रत्येक मनखी मूल आवश्यकता छे। ग्रामीण क्षेत्रों में लंब बखत बढ़ी लोगों विशेषकर महिलाओं के पानी लोड़ा की जी दूर दूर तक जा पड़ी यो समस्या के दूर करने का उद्देश्य भारत सरकार हर घर नल योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत करी। देखियो हर घर नल योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर में नलक माध्यम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा यो योजना के अंतर्गत गौन में जल स्रोतों का विकास पाइपलाइन बिछू और जल संरक्षण कार्य करी जा रही। दगड़ियों यो योजना तो मुख्य उद्देश्य छन प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचो जल जनित रोगों के कम कर महिलाओं और नानतिनोक बहुत व श्रम बचू जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के बढ़ावा देना। हर घर नल योजना ग्रामीण जीवन में बड़ा परिवर्तन आ घर पर प्राणी उपलब्ध होने लोगों के सुविधा मिली और स्वास्थ्य में सुधार भो नंतिनों के शिक्षा के लिए ज़्यादा बहुत मिलो तथा महिलाओं के कठिन परिश्रम कम करना पड़ो। लेकिन दगड़ियों कुछ क्षेत्रों में जल स्रोतों कमी पाइपलाइनों रख रखाव और जल संरक्षण जैसी चुनौती आयले मौजूद छन। इन समस्याओं के समाधान लिए जन भागीदारी आवश्यक छे। तो दगड़ियों हर घर नल योजना स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम छे। पानी सही उपयोग और संरक्षण करना यो योजना के सफल बढ़ाई जा सको स्वच्छ जल स्वच्छ समाज और मजबूत राष्ट्र निर्माण संभव छे। योशी आप लोगों दखल बातचीत और अब कार्यक्रम में अगिल सुनो संदीप सोनू गई थी यूलू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही देर में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहले मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को सम्मानित किया। और नीट यूजी परीक्षा, कल परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस दौरान देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकैंट में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य के लगभग 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। किसानों की आय बढ़ने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपए के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉली हाउस बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर अल्मोड़ा जिले के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम और गोष्ठी आयोजित की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा जारी किसान सम्मान निधि हमारे देश के किसानों का कृषि उत्पादन के लिए आधार है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का किसानों को संबोधन किसानों का मार्गदर्शन करेगा। श्री टम्टा ने कहा कि पूरे देश के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से परंपरागत कृषि के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जो कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर एक महत्वाकांक्षी योजना का आज ये 23वीं किस्त रिलीज हो रही है, और ये पीएम किसान की 23वीं किस्त के आवंटन में प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन भी है, मार्गदर्शन भी है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर भी आज हमारे किसान भाइयों को गोष्ठी के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने जागरूकता के साथ साथ किसान सम्मान निधि से भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मिलने वाला है उसकी उपयोगिता और उसकी महत्ता को बताने का कार्यक्रम भी चलाया है। हमारे उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश भर के अंदर खेत बचाओ अभियान के माध्यम से केमिकल खेत में कम पड़े, और जो हमारी परंपरागत खाद के खेत की खाद है उसी पर आधारित खेती को हम करें, जिससे कि बीमारियों को भी आमंत्रित ना करें और लोगों का जीवन भी बचा सकें। ये जागरूकता के कार्यक्रम भी लगातार सरकार के माध्यम से किसानों के बीच में किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबके लिए मार्गदर्शन बना है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर किया जाएगा। इन शिविरों में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को योगाभ्यास कराया जाएगा और योग के लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसे लेकर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य कार्यालय ने सभी जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमियों को अपने अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने और अधिक से

0: अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड पुलिस को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राज्य पुलिस के लिए संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान देशभर

0: पर भी उपलब्ध हैं।
1: उत्तराखंड पुलिस को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राज्य पुलिस के लिए संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान देशभर में पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन के आधार पर दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उत्तराखंड पुलिस को ये सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखंड पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये उपलब्धि उसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तराखंड पुलिस नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाती रहेगी। वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि ये सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश में कल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के लिए केंद्र सहित जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा एवं गोपनीयता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। वहीं सीमांत जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में कल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए चमोली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत समस्या उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून सहित प्रदेश के सभी स्थानों पर परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। नीट परीक्षा को लेकर देहरादून के एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को परीक्षा के दिन निर्धारित समय से 4 घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्रों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं निर्वाचक नियमावली से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की गई। बैठक में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन समयबद्ध और त्रुटि रहित पूर्ण रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से करें, साथ ही डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं के नाम नियम अनुसार हटाए जाए।
2: दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, कहीं पर नेटवर्क शैडो एरिया होने के कारण थोड़ा प्रगति कम आ सकता है, बट अभी तक उस पर क्या उपाय योजना है, क्या कार्य योजना है, वो अगर उन्होंने तैयार कर लिया होगा तो उसमें आगामी 2 से 4 दिनों प्रगति आ सकती है। 7 जुलाई तक पूरा होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर SDMs एंड AERs रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू के आधार पर कोई अगर उपाय योजना करनी है, कार्य योजना बनानी है, स्ट्रेटेजी चेंज करना है, वो कार्रवाई भी कर सकते।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को सम्मानित किया। और नीट यूजी परीक्षा कल परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब चलते हैं भक्ति संगीत की ओर और सुनते हैं विपिन रहेजा के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: इसी भक्ति वंदन के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सेंटरों में योग दिवस शिविरों को आयोजन किए जालू। पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकार उत्तराखंड पुलिस तय सम्मानित करी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में पौड़ी में रन फॉर योग रैली को आयोजन किए गए।

0: अब समाचार विस्तार बटिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का खातिर 4,400 से अधिक श्रमिकों तय DPT का माध्यम बटिन लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों का खाता में भेजी। ये दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग तय श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाण का निर्देश देने। उन बोली कि अलग अलग क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों तय योजनाओं को लाभ दिए जालू। मुख्यमंत्री ने बोली कि श्रमिकों का कार्य स्थलों का नजीक जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाली ताकि उनको सुविधाएं मिल सकूं। उन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण और उनका बच्चों की शिक्षा तय बढ़ावा दियोन का खातिर विशेष शिविर आयोजित कन पर भी विशेष जोर देनी। आम जनता तय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य बटिन केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल आयुष्मान योजना लोगों तय वरदान साबित होनी चाहिए। योजना का तहत राज्य का प्रत्येक परिवार तय प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए जाते चाहिए। सीमांत चमोली जिला में भी ये योजना को लाभ लोगों तय मिलना चाहिए। योजना का माध्यम बटन हजारों गरीब एवं जरूरतमंद मरीज गंभीर बीमारियों को निःशुल्क इलाज करोना छिन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का अनुसार जिला में अब तक लगभग 2,39,000 आयुष्मान कार्ड बने। योजना का तहत 72,700 से अधिक लाभार्थियों तय उपचार मिली जबकि अब तक 118,08,58,372 रुपए को उपचार कराई ची।
1: अटल आयुष्मान योजना में हमारे सभी चिकित्सालयों में जो है संचालित है, कोई भी रोगी वहाँ पे आके भर्ती होने पर इसका जो है लाभ उठा सकता है। अभी तक वर्तमान में जनपद चमोली में जो है 2,39,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं जिसमें जो है अभी तक जब से योजना चालू हुई है 72,700 लोगों ने इसका लाभ लिया है और जो इसमें धनराशि का जो व्यय हुआ है वो आपको सुन के जो है ताजब होगा कि ये 118,08,58,377 रुपए की जो है धनराशि इस पर जो है खर्च की गई है। और ये जितने भी हमारे जनपद चमोली के सरकारी अस्पताल हैं और अगर वहाँ पे इलाज नहीं हुआ और बाहर कहीं रेफरल होता है तो जनपद के बाहर देहरादून में या देहरादून के बाहर जो है अन्य प्रदेशों में भी इसका लाभ जो है लाभ लिया जा सकता है।
0: योजना को लाभ उठाने वाला मरीजों और उनका परिजनों को बोंची कि केंद्र एवं राज्य सरकार की यह पहल गरीब परिवारों का खातिर बेहद उपयोगी साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर का सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में योग शिविरों को आयोजन किए जालू साथ ही नागरिकों तय योग का प्रति जागरूकन का खातिर विशेष गतिविधियां संचालित किए जाली। ये कदगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम को सीधा प्रसारण भी कॉमन सर्विस सेंटरों में किए जालू। यूं सभी शिविरों में स्थानीय नागरिकों महिलाओं युवाओं विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों तय योगा अभ्यास कराए जालू और योगा का लाभों की जानकारी दिए जाली। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का राज्य कार्यालय सभी जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमियों तय अपना अपना क्षेत्रों में योग शिविर आयोजित कन एवं ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कन का निर्देश देने। सीमांत जिला चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में भोल होने वाली नीट UG परीक्षा का खातिर चमोली जिला प्रशासन सभी तैयारियां पूरी करें। परीक्षा तय केंद्र सहित जिला में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा का बीच भारतीय वायुसेना का MI-17 बटन पेपर लाए गए। परीक्षा तय प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियाला सैन गोपेश्वर तय एकल परीक्षा केंद्र बनाई। परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता का खातिर विशेष सतर्कता बरतन का निर्देश देने। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बताए कि भोल होने वाली नीट परीक्षा का खातिर सभी तैयारियां पूरी वेगिन संबंधित अधिकारियों तय व्यवस्थाओं को जिम्मा सौंपी गई। परीक्षा का दौरान के भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत समस्या उत्पन्न होने का निर्देश देने। वखी पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बताए कि जिला में परीक्षा की संवेदनशीलता ते देखता हुआ सुरक्षा का दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती किए गए।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खोड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छे।

उत्तराखंड पुलिस तय वित्तीय वर्ष 2025-26 का दौरान पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकारन राज्य पुलिस तय संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार बटिन सम्मानित करी। यू प्रतिष्ठित सम्मान देश भर में पासपोर्ट आवेदनों का पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन का आधार पर प्रदान किए गए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरन उत्तराखंड पुलिस तय यू सम्मान प्रदान केरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन ये उपलब्धि का खातिर उत्तराखंड पुलिस तय बधाई देंदा हुआ बोली कि नागरिकों तय गुणवत्ता पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करोण सरकार के प्राथमिकता छे। यह उपलब्धि भी दिशा मां किए जाने वाला प्रयासों की सफलता को प्रतीक छे। उन आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तराखंड पुलिस नागरिक सेवाओं का क्षेत्र में ये प्रकार ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरव बढ़ोली। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठन बताए कि यू सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया तय समयबद्ध पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनोण का खातिर कन वाला सतत प्रयासों को परिणाम छे। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों को डिजिटलाइजेशन एवं निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों की प्रगति का खातिर बैठक हुई। बैठक में राज्य का अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडेन बोले कि सभी गणना प्रपत्रों को 100% डिजिटलाइजेशन समयबद्ध व त्रुटि रहित तरीका से पूर्ण किए जालो। उन बोली कि BLO ऐप का माध्यम बटन प्राप्त आवेदनों को निस्तारण प्राथमिकता से करिया RS साथ ही डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं को नाम नियमानुसार हटे जाओ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे गए। उच्च न्यायालय अब 29 जून तक खुल्लू। उच्च न्यायालय का कैलेंडर का अनुसार हवाई कोर्ट में 22 जून बटन 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का सांसद अजय भट्टन आज जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना की समीक्षा करी। बैठक में उन अधिकारियों तय परियोजना बटिन जुड़ी सभी बाधाओं तय प्राथमिकता दगड़ी दूर कन का निर्देश दिन। ये दौरान सांसद अजय भट्टन बोली कि जमरानी बांध उत्तराखंड तय लाइफ लाइन परियोजना छी। ये कपूर्ण होण से हल्द्वानी लालकुआ क्षेत्र सहित तराई भाबर तय सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिली। श्री भट्टन बोली का परियोजना 14 मेगावाट जल विद्युत की उत्पादन होलू और बाढ़ नियंत्रण में भी बांध से मदद मिली। उन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मुआवजा वितरण एवं विस्थापन संबंधी प्रकरण ते त्वरित निस्तारण का निर्देश दिने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग का संयुक्त तत्वाधान में पौड़ी में भव्य रन फॉर योग रैली को आयोजन केरी। रैली तय स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी एवं अपर जिला अधिकारी FR चौहानन हरी झंडी दिखाकर रवाना केरी। रैली का माध्यम बटिन लोगों तय स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवन शैली का खातिर योग अपनौण तय प्रेरित करी। ये अवसर पर स्थानीय विधायक कन बोली कि योग देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर छी जेमा पूरा विश्व तय स्वस्थ जीवन को मार्ग दिखाई छी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून प्रदेश का 8 जिलों का कुछ हिस्सों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को येलो अलर्ट जारी करी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी बागेश्वर पिथौरागढ़ और नैनीताल में कखी बिजली चमकण और आंधी चलन को अनुमान जताई। मौसम तय देखता हुआ विभागन यात्रियों तीर्थयात्रियों से यात्रा की पहली मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सलाह देनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन उत्तराखंड भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभार्थियों तय सहायता राशि वितरित करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर का सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में योग शिविरों को आयोजन किए जालू। पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकारन उत्तराखंड पुलिस तय सम्मानित करी। अरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में पौड़ी में रन फॉर योग रैली को आयोजन किए गए।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारतीय ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनी सब श्रोतान के रमाशंकर नमस्कार। श्रोता कार्यक्रम प्रायोजित है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोता आपको सब लोग राजी खुशी होने ला और हमारे कार्यक्रम को सुन लाग ला। दगड़ियों खेत पैत हमार जीवन के लिए कतु को जरूरी ही यह बात का हम सब जानू। और अगर हम आपको पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ खूब सारे मात्रा में हमारे खेत पैत में जो असोज में फसल तैयार है वो सबसे ठूल फसल मानी जाए। तो इनमें हम धान उगानू और दलहन रूप में हम भट मास गहत उगानू। एक अलावा हमारे यहाँ जो और मुख्य फसलें देखा उगाई जाए वो छो मडू झुंगर कौन यानी कि जिनको हम मोट अनाज कुनू। तो मोट अनाजक हमार पर्वतीय क्षेत्रों में सदियों बतीक रिवाज छो उगणक और एक प्रकार कही जाए कि यह हमार फसलक मुख्य आधार ले रही छू। और मडू छू झुंगर छू कोई चीज छू उके उगाण दगड़ दगड़े आप यह देखिएगो कि स्वास्थ्य के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनाजक रूप में होने लग रही। और यह देखिएगो कि यह अनाज जब उगाई जा तो यह मट्टे की उर्वरता ला बढ़ी और यह जो अगर नहीं हूँ तो कम पानी में लग फल उत्पादन करूँ। तो हम तो यह कुल कि जो पहली बत्ती हम परंपरागत रूप में मोट अनाज को उगाण लग रही थी चाहे वो हमारे मधु छू झूमर छू कौन छू तो वी लीजिए सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य ला सरकार तय कर रखो। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर ये बारे में सोचें उनको उगाई जाओ तो इन्हें मांग ला भल छू और दगड़ दगड़ा यह स्वास्थ्य में जिला भल छे।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: और श्रोता कार्यक्रम में आगे मैं आपको सुना लूँ खेत बचाओ अभियान के तहत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर हिमानी ढोंडियाल तक करी गई यह क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता यहाँ तक भेंट करने लग रही रमाशंकर नैलवाल। श्रोताओं नमस्कार, आज शनिवार है और आज हमारा कार्यक्रम होता है किसान वाणी खेतों में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान की। खेत बचाओ अभियान जहां हमारे कृषि के भविष्य के लिए एक बहुत ही बेहतर अभियान है। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए किस तरह से हम कृषि को टिकाऊ बना सकते हैं, किसान के जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक मिशन है जो हमारे दालों को बढ़ावा देने का काम करता है जिसका नाम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं और किस तरह से ये किसानों की जीवन में समृद्धि लाने का काम कर सकता है और दालों के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बना सकता है, तो इसी विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं हिमानी ढोंडियाल जी से। आप सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी जिला अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। तो हिमानी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमानी ढोंडियाल सहायक कृषि अधिकारी जनपद अल्मोड़ा मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में कार्यरत हूँ।
0: जी जी हिमानी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए, ये क्या है?
2: जी दलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु यह योजना लाई गई है क्योंकि दलहन में आत्मनिर्भरता योजना है। इसकी जो समय अवधि है वो 6 वर्ष की है, 2025-26 से 2030-31 तक।
0: अच्छा
2: जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दलहनों का उत्पादन है उसे बढ़ाना है ताकि जो आयात है हमारा जो होता है उसकी निर्भरता को हमें समाप्त करना है।
0: अच्छा, मतलब ये एक 6 साल का मिशन है और इस 6 साल के मिशन के अंतर्गत जो आपने उद्देश्य बताए कि दलहन उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने और जो हम दालें आयात करते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो, शायद यही इसका उद्देश्य है।
2: जी बिल्कुल। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मिशन के अंतर्गत 3 फसलें हमारी ली गई हैं दलहन की, उर्द, अरहर और मसूर, लेकिन जनपद अल्मोड़ा में केवल उर्द जो है उसके हमें लक्ष्य दिए गए हैं।
0: अच्छा।
2: तो उर्द में ही हम ये मिशन क्योंकि 25-26 से ही शुरू हुआ है तो हमें जैसे लक्ष्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
2: जी
0: उर्द का मतलब जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लोग जानते हैं यानी कि मांस की दाल कहें। हमारे यहाँ मांस जो है एक असोज में होने वाली फसल है, दलहन में जब असोज की फसल करती है तब मांस की दाल तैयार होती है। तो हिमानी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मिशन में आप क्या काम करेंगे, किस तरह से किसानों को बताएंगे?
2: जी, तो इस मिशन में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जनपद में हमें 50 हेक्टेयर का एरिया मिला है, उसके बाद हम इसमें 2-2 हेक्टेयर के अपने जो डेमोंस्ट्रेशन जिसे आप फसल प्रदर्शन कहते हैं वो कराएंगे। इसके लिए हम जो हमारे इच्छुक किसान हैं या फिर जहाँ पे हमें लगता है कि दलहन की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे और वहाँ पे हम अपना फसल प्रदर्शन करवाएंगे। तो फसल प्रदर्शन में सबसे पहले हम उन्हें बीजों का उपचारित बीज जो है हमारे उनका वितरण करेंगे, फिर उसके बाद खेतों की तैयारी एवं बीजों की बुवाई हेतु उनकी सहायता करेंगे, साथ ही उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में बताएंगे, और साथ ही प्रचार प्रसार की जो हमारी सामग्री है उसका भी उन्हें वितरण किया जाएगा, और इसके साथ हम वैज्ञानिकों का जो हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे या फसल प्रदर्शन हुए हैं वहाँ पे उनका भ्रमण कराएंगे, एवं जो हमारे कृषक हैं जो उस क्लस्टर जो हमारा है कहे हम उसके अंदर आएंगे उन सभी को हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
0: तो इसमें क्या अगर मान लो कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दलहनों का उत्पादन कम होता है तो क्या वहाँ मृदा परीक्षण या मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा?
2: जी बिल्कुल, जहाँ पे ऐसे एरिया जो है हमारे, इसके लिए हमारी एक अलग स्कीम भी चलती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे एरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम उनके किसानों की लिस्ट बना के उनके जो उनकी जो खेत है उनसे सैंपल लेते हैं, और हर साल ही हमारे टारगेट्स आते हैं तो हम इस पर भी काम करते हैं।
0: कहने का मतलब यह है कि बीज की बुआई से फसल की कटाई तक पूरी एक तरह से मॉनिटरिंग या आपकी देखरेख में ये मिशन चलेगा, और उत्पादन के बाद जो फसल तैयार होगी तो उसको किसान क्या करेगा, स्वयं उपयोग करेगा या उसका कोई सरकार की योजना है उसको खरीदने की?
2: जी, अगर फसल के बाद जो उसका उत्पादन होगा उसे वो MSP कहते हैं हम, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाँ, तो उस पर वो उसे हम खरीदेंगे, और अगर किसान खुद भी उसको
0: चाहे तो
2: खुद भी बेच सकता है, अगर वो खुद बेचने में सक्षम है तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: इसके अलावा जो प्रदर्शन के बाद आप फसल बोने और कटाने का काम करेंगे तो इसमें पूरी प्रक्रिया में जो बीज है खाद है क्या विभाग उसको किसानों को निशुल्क देगा या किसान को अपने खर्चे पर वो खरीदने होंगे?
2: जी, किसान इसको बिल्कुल किसानों को निशुल्क दिया जाएगा जो इस क्लस्टर के अंदर होगा उस किसान को हम बिल्कुल निशुल्क।
0: तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जैसे आपने बताया कि हमको आत्मनिर्भरता बनाना है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की स्थितियों के हिसाब से या जो यहाँ की जलवायु है या यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं आपको उसमें क्या लगता है कि प्रोडक्शन में क्या कोई चुनौतियाँ यहाँ आती हैं?
2: जी, जो हमारी दलहन है हमारा वो एक हार्डी क्रॉप होती है जो कि हम कहेगी वो मतलब ड्रॉट टॉलरेंट होती है। तो इस बार जैसे आप जानते हैं कि ये जो एरिया है हमारा रेनफेड है, मतलब वर्षा आधारित कृषि पर ये निर्भर है। तो इसमें क्या है कि जो पल्सेस है हमारी दलहन है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि उन्हें क्या है कि ज़्यादा इरीगेशन जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सिंचाई की, तो वो बिल्कुल इसको आसानी से कोप अप कर जाती है जो हमारी पल्सेस हैं। तो ये बिल्कुल पहाड़ों के लिए अगर इसका विस्तार किया जाए इस पल्सेस का तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा हमारी सॉइल मिट्टी के लिए भी, क्योंकि उसकी उर्वरता जैसे आप जानते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, तो ये क्या है कि हमारी जो उर्वरता है उसको संतुलित करने में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे।
0: तो इस तरह से यह है कि ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक रहेगी, और साथ ही साथ अगर ये एक व्यवस्थित तरह से किया जाता है तो किसानों की जो आर्थिकी है वो भी काफ़ी मजबूत होगी। तो हिमानी जी, जो इस समय खेत बचाओ अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने बातचीत की, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे?
2: जी बिल्कुल, खेत बचाओ आंदोलन अभी चल रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं जो हमारी मिट्टी है उनमें उर्वरता जो है निरंतर क्या है उसकी कम होते जा रही है,
0: ह्रास
2: हो रहा है एक आप चाहे देखें तो इसमें हमारा जो है आंदोलन के तहत हम किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 जून से लेकर 30 जून तक हमने पूरा रोस्टर निकाला हुआ है और जगह जगह जनपद में 1 दिन के 2 कार्यक्रम आयोजित हो किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो VPKS के साइंटिस्ट हैं और साथ ही हमारे KVK के साइंटिस्ट हैं वे किसानों को स्वयं और हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं वे जाके किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जो हमारे होते रसायन हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और उनको तकनीकी ज्ञान भी दे रहे हैं साथ साथ। तो ये कार्यक्रम जो है निरंतर 30 जून तक किया जाएगा।
0: तो ये पूरे जनपद में किया जा रहा है?
2: जी जी जी बिल्कुल, पूरे जनपद में किया जा रहा है ये।
0: किस किस तरह से उसको आयोजित करते हैं?
2: जी, इसमें ऐसे गोष्ठी, जैसे हम किसानों को इसमें आमंत्रित किया जाता है कि उन्हें बताया जाता है हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनके द्वारा कि आज इस स्थान पे हमने गोष्ठी करवानी है और कार्यक्रम करवाना है। साथ ही वहाँ पे हमारे रोस्टर के अनुसार हमारे साइंटिस्ट आते हैं VPKS और KVK से, और हमारे खुद अधिकारी रहते हैं वहाँ पे। और जो किसानों को पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ के बारे में बताया जाता है, और उनसे आग्रह किया जाता है कि वे किस तरीके से अपनी जो खेती है उसमें रसायन का कम प्रयोग करें, और क्या डोज है रसायन की जो सही मात्रा में होंगी वे उन्हें बताया जाता है।
0: मतलब जो अनुमानित डोज है उसी का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा भी
2: जी
0: देखा गया है कि
2: कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो दोनों ही क्या है एक पौधे के लिए उतनी ज़्यादा उसके पालन पोषण में, जैसे हम पौधे का बात करें तो उसमें कमी आ जाएगी, तो इसलिए हमें उसको बताना होता है उनको, किसानों को, कि किस तरीके से वो डाले दो।
0: तो मैं अपने श्रोताओं की तरफ से अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप इस अभियान और इस मिशन के बारे में क्या संदेश कहना चाहेंगी?
2: जी, तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि वे अपने आसपास के जो कृषक हैं उनसे उनसे अनुरोध कीजिए कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग करें, और किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि किस तरीके से वे अपनी फसलों को का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और जिससे कि, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी दलहन है उसमें किस तरीके से दलहन के कारण हमारे जो जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है और साथ ही हमारी जो लागत है वो कैसे कम हो सकती है। और बिल्कुल ये हमारे पहाड़ के लिए दलहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और जो दलहन में सिर्फ उड़द तो इसके अंदर है, लेकिन जो हमारी लोकल और है, जैसे हमारा दूसरी हमारी मसूर हो गई, और हमारा अगर कोई अरहर लगाता है, गहत है, ये जो हमारी लोकल फसलें हैं इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। और
0: आपने हमसे बात की और हमारे श्रोताओं को खेत बचाओ अभियान दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की जानकारी दी। हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोता अल्लाह आप लोग सुन रहे थे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन विषय पर हिमानी ढोंडियाल सहायक कृषि अधिकारी जिला अल्मोड़ा डगर करी गई क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार

0: देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता कार्यक्रम में आगे ना आपको सुनाना लग रही हूँ कि पशुओं में टीकाकरण के लिए जरूरी थे यह विषय पर डॉक्टर कमल दुर्गापाल दगर करी गई यह भेंटवार्ता इन्हें दगर भेंट करने लग रही प्रमोद कुमार पांडे।
4: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, पशु हमारे जीवन और कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें दूध, खाद, श्रम और अन्य उपयोगी संसाधन प्रदान करते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। टीकाकरण से पशुओं को अनेक संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो इसी सब बातों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पशु चिकित्सा अधिकारी धौलनेली अल्मोड़ा से डॉक्टर कमल दुर्गापाल जी को। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पशुओं में टीकाकरण कब और क्यों विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद, सभी श्रोताओं का मेरा आज नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, पशुओं में टीकाकरण क्यों हो सके?
5: पशुओं में टीकाकरण, देखिए हम बहुत सहजता से इस चीज को ले लेते हैं, पशुओं में टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। क्यों? देखिए सबसे पहले इसके पहले हमें जानना होगा कि एक स्वस्थ जीव या एक स्वस्थ शरीर आखिर क्या होता है।
4: जी,
5: WHO की गाइडलाइंस के अनुरूप कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु या कोई भी जीव या जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से अगर वह सहज महसूस कर रहा है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। और यदि किसी प्रकार की असहजता उसे है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी अन्य प्रकार से, तो उस जीव को अस्वस्थ कहा जाता है।
4: जी,
5: और हमारा शरीर जो उसकी सहजता है, जो मैं कह रहा हूँ, तो सहजता स्वस्थ रहने की है, एक जो इनबिल्ट उसकी, तो वो एक स्वस्थ रहने की है। तो ऐसे में एक शरीर, हर एक जीव के शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप्ड है ताकि वो स्वस्थ रहे। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए तीन प्रकार की मुख्य चीजें होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें तीन प्रकार से मिलती है।
4: जी,
5: एक तो हमें जो बाय बर्थ मिलती है, जो कि या तो उसके अनुवांशिकता में रहे, उसके जीन्स क्रोमोजोम्स में रहे, उसके माँ के द्वारा उसको मिले, और दूसरी उसको वो मिलती है उसके पैदा होने के बाद, जन्म के बाद।
4: जी,
5: जो माँ के द्वारा मिलती है उसमें आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि जीन्स क्रोमोजोम्स में तो बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चा, जो कोई भी पशु का बच्चा जब उसके गर्भावस्था में होता है, तो उसको यदि हम पैदा होने के बाद तत्काल हम उसका कोलेस्ट्रॉम, जो खीज कहते हैं हम शुरुआत में, जो पहला दूध आता है उसको यदि हम पिलाते हैं, तो जो बच्चा है उसमें जीवन पर्यंत एक रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है। और मैं इसके लिए सभी को जागरूक करना चाहूंगा, सभी पशुपालकों को, कि हमें आवश्यक रूप से अपने पशु को, के बच्चे को, जो नवजात बच्चा है, उसको खीज जो है, उसकी कोलेस्ट्रॉम जो है, वो खिलाना चाहिए।
4: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पशुपालन विभाग द्वारा किन रोगों हेतु टीकाकरण किया जाता है? कौन सा पशु टीका किस प्रजाति के पशु को लगाया जाता है?
5: मुख्यतया देखिए हमारे वहाँ एक LSDCP कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे वहाँ कार्यक्रम चल रहा है NADCP और दूसरा LHNDC। NADCP के अंतर्गत हमारे वहाँ खुरपका मुपका रोग का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, ब्रुसेल्ला का कार्यक्रम चल रहा है, और इसी प्रकार से हमारे वहाँ LHNDC कार्यक्रम के अंतर्गत PPR और CSF, PPR एक रोग बकरियों में होता है और CSF जो हमारे सुकर प्रजाति में होता है, इनमें होता है, तो ये टीकाकरण किए जा रहे हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, गांव घरों में अक्सर कहा जाता है कि पशुओं में टीका लगाने से दूध कम हो जाता है या फोड़ा हो जाता है, क्या ये बात सच है?
5: देखिए ये एक हमारी एक मिथ्या है, अवधारणा है हमारी, जो कि पूर्णतया असत्य है, गलत है। और इसका मुख्यतया जो कारण होता है, देखिए अभी हम ही हैं अपने पशु को, अपने बच्चे को, किसी को भी शिशु को यदि हम टीका लगाते हैं तो उसमें एक मामूली सा बुखार आना एक स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक से किसी बच्चे को अगर टीका लगेगा, हमें लगेगा, कोरोना के हमें टीके लगे तो एक बुखार सा आया।
4: बिल्कुल,
5: तो उसी प्रकार से हमारे पशु के को भी यदि जब टीकाकरण होगा तो उसमें भी एक स्वाभाविक रूप से वो एक छोटा मोटा चेंज आने की संभावना है, किंतु एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं पशु असहज होता है उसके कारण होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप उसको संतुलित आहार, पानी आदि देंगे तो वो फिर सहज महसूस करता है और एक आध दिन में, कुछ घंटों में ही वो नॉर्मलाइज हो जाता है।
4: यानी कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं होता है?
5: नहीं, इस प्रकार से कुछ नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए होता है जिसमें हम घबरा ज्यादा जाते हैं, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है।
4: तो डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग के पशुओं में टीकाकरण किया जा सकता है? क्या जो नवजात बछड़े हैं, जो भी पैदा हुए हैं, उनमें भी टीका लगाया जा सकता है?
5: देखिए टीका समस्त जितने भी हमारे पशुधन है सभी को टीका लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ अपवाद जो दिशा निर्देश भारत सरकार के हैं उसके अनुरूप ये है कि 4 माह से कम आयु के बच्चे और इसके अलावा जो 8 माह से अधिक गर्भावस्था के

0: पशु हैं उनको टीका नहीं लगाया जाता, अन्यथा सभी पशुओं में टीका लगाया जाता है।
1: तो पशुपालक द्वारा टीका करने से पूर्व एवं पश्चात अपने पशुओं हित के लिए किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए?
0: देखिए, सावधानी में ये है कि हमें अपने पशु को, सबसे पहली बात तो यह है कि टीका जब लगाने आते हैं उससे पहले हम एक संदेश अपने सभी पशुपालक भाइयों को हम ये देते हैं कि हम कल टीका लगाने आ रहे हैं। तो उससे पहले आप ये करें कि अपने पशु को पहले ही दिन से एक संतुलित आहार और जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उसकी रखें।
1: क्या होना चाहिए संतुलित आहार?
0: संतुलित आहार उसको देखिए, पोषक तत्व जो है उसको हम पशु आहार जो है उसको दे सकते हैं। घर में हम खली वगैरह दे सकते हैं उसको, जो हमारा प्रोटीन वगैरह के लिए हम सोयाबीन वगैरह की ये सब चीज़ें, भट वगैरह जो हमारे पास लोकली अवेलेबल है ये दे सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके शरीर को कहीं ना कहीं एक संतुलित जो है का शरीर का पोषक तत्वों को मेंटेन कर सकते हैं।
1: जी साहब, हमारे बहुत से पशुपालक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पशुओं को नमक नहीं खिलाना चाहिए, ये कहाँ तक सत्य है?
0: नहीं, देखिए, पशुओं को संतुलित आहार की जहाँ तक बात है, देखिए जैसे हमारे भोजन में सारी ही चीज़ें होनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: चाहे उसमें अचार हो, चाहे उसमें घी हो, नमक हो, सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, सभी कुछ, चावल भी होना चाहिए, और तभी हमें अच्छा भी लगता है और तभी हमारा शरीर
1: स्वाद भी बढ़ता है।
0: और सारी संतुलित चीज़ें, सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है सारा कुछ सारा जाना चाहिए। तो वैसे ही नमक भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम कहते हैं कि पशुओं को नहीं देना चाहिए, ऐसा हमने भी गाँव में सुना है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यह पूर्णतया गलत है। और हमें पशु को उसकी आयु वर्ग के हिसाब से, उसकी गर्भावस्था या फिर अन्य प्रकृति जो शरीर की स्थितियां हैं उसके हिसाब से जरूर नमक देना चाहिए। गाभिन पशु को भी आवश्यक रूप से नमक दिया जाना चाहिए,
1: यानी कि नमक शरीर के लिए आवश्यक
0: आवश्यक है।
1: दरअसल एक बात आती है कि टीकाकरण आपने चला रखा है आजकल, जैसे अभियान चल रहा है
0: जी,
1: तो ये टीकाकरण कब से कब तक है?
0: देखिए, ये सब जो चीजें हैं ऊपर भारत सरकार, मतलब जहाँ से हमारे टीके की अवेलेबिलिटी होती है तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। बेसिकली ये दो बार साल में चलाया जाता है, खुरपका और मुंहपका के लिए। एक बार आप मोटा मोटी आइडिया लगाएं तो एक बार दिवाली के आसपास और एक बार होली के आसपास, उसके आसपास टीके लगाए जाते हैं
1: जी। अब जैसे खुरपका मुंहपका की बात यहाँ पर चल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये खुरपका मुंहपका है क्या?
0: देखिए, खुरपका मुंहपका एक वायरल रोग है और इसमें होता क्या है कि हमारा जो पशु है उसके मुंह पर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, मुंह में, जीभ में उसके दाने होने लगते हैं। इसी प्रकार के इससे उसके खुरों के बीच में भी दाने होने लगते हैं। और बेसिकली ये जो खुरपका मुंहपका रोग है, जो खुर वाले जानवर होते हैं, दो खुर वाले जानवर होते हैं उनमें होता है,
1: जैसे
0: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और इसके अलावा सूकर में भी होता
1: है।
0: तो ये एक प्रकार का रोग है जो मुंह में छाले कहीं ना कहीं उत्पन्न कर देता है, और उससे क्या होता है, पशु जो है खाना नहीं खा पाता है और वैसे ही चलने में भी उसे परेशानी होती है। आगे जाके अगर उसका इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसमें, उसी घाव में, तो उसके पैर पकने लगते हैं, चलने में दिक्कत होगी। लंबे समय तक यदि पशु खाना नहीं खाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। सावधानी के रूप में यदि आप सामान्य रूप से पूछे तो सावधानी यही करनी है कि हमें उस पशु को अच्छा खाना किसी प्रकार से देना है। अगर वो वैसी चीज़ें नहीं खा पा रहा, घास वगैरह, कठोर चीज़ें नहीं खा पा रहा, तो हमें मुलायम चीज़ें उसे देनी है, अधिक से अधिक तरल चीज़ें देनी है, पानी, ऐसी चीज़ें देनी।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या जो ये टीकाकरण अभियान आपका चलाया जा रहा है इसका कोई शुल्क?
0: टीकाकरण का देखिए, अधिकांश जो टीके हैं हमारे पास इस वक्त भारत सरकार के टीके आ रहे हैं, भारत सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहे हैं और सभी निःशुल्क हैं। हाँ, कुछ टीकों के, जैसे विशेष रूप से हम बात करेंगे, एक एस्केट कार्यक्रम के अंतर्गत रेबीज का टीकाकरण हो रहा है, उसके लिए आप अपने श्वान पशु को, श्वान पशु में जो बेसिकली लगता है
1: कुत्तों को
0: जी, उनको आप हमारे पशु चिकित्सालय में लाएं, और लाने के बाद एक सामान्य पर्ची, जो शहरी क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र है उसमें 40 रुपये की पर्ची, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 10 रुपये की पर्ची कटा के आप टीकाकरण करा सकते हैं रेबीज का।
1: यानी कि कोई भारी शुल्क नहीं लिया जाता है,
0: और भी हम पशुपालक के द्वार पर ही जाके वो सेवा प्रदान करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते टीकाकरण के अतिरिक्त पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ रखने हेतु क्या कर सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, वैसे तो ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, अपने आप में विस्तृत विषय है, लेकिन इसके बारे में सामान्य बात अगर हम सोचें तो हमें एक उसका आहार, पशु का आहार, दूसरा उसका आवास, और उसके जो है शरीर में कुछ और चीज़ों की, अब उसके व्यवस्था में जो हम प्रबंधन करते हैं उसमें कुछ सामान्य से और चीज़ों के परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आवास में हम क्या कर सकते हैं, आवास में अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर कि पहाड़ में जो हमारे छत होती है, गोट जिसे कहते हैं आवास, उसमें तो गोट की छत काफ़ी नीची होती है जिसे, और दूसरा खिड़कियाँ जो होती हैं बहुत कम होती हैं, तो एक वातानुकूलन नहीं होता है, जिसके कारण श्वास संबंधी रोग और अन्य अमोनिया जो भी यूरिन वगैरह वहीं पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पशु है उसके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से भोजन भी हम लोगों का क्या होता है, देखिए हम लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे अभी हम पशु जब गाभिन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं कि अधिक घास नहीं देनी है
1: जी।
0: तो घास नहीं देनी है तो उसमें क्या है, होगा क्या, पशु के अंदर एक गर्भावस्था में एक बच्चा भी गर्भ में है, और उससे बच्चा भी कमजोर होता है, यदि हम घास कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पशु भी कमजोर हो रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं संतुलित आहार मेंटेन करें हम, और दूसरा उसका आवास को अगर हम सही रखें, समय समय पर टीकाकरण करें।

0: और हम अपने पशु को हर 3-4 महीने में कृमिनाशक जो दवाएं हैं, बाह्य कृमिनाशक, जाए कीने अटिंडी की दवाएं या फिर पेट के कीड़े की दवाएं अगर देते हैं तो कुछ मुख्य इन सावधानियों को अगर हम प्रयोग मिल लें तो हम शायद अपने पशु को सामान्य तौर पर अच्छा रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, पशुओं में टीकाकरण कब और क्यों विषय पर आपने हमको जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताल आप लोग फोन लागर किया, पशुओं में टीकाकरण के लिए जरूरी छो के टीक हमको देना चाहिए, को तरीकल देना चाहिए, यह विषय पर हमको जानकारी देने लागर थी डॉक्टर कमल दुर्गापाल और इन्हें जगह भेंट करने लागर थी प्रमोद कुमार पांडे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

बताओ यकर अगर हमारे किसान वाणी कार्यक्रम एते के संपन्न हो, यह कार्यक्रम प्रायोजित छे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, वो कार्यक्रम में आप लोग जगह फिर भेट रहे, तब तक लीजिए हम आज्ञा दियो, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में कुमाऊनी उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नो दगड़ मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन व अन्य सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डक विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सहायता राशि बांटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भरक सभ्य

0: अब समाचार विस्तारण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4,400 है अधिक डीबीटी के माध्यम लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों खातन में भेजी। यो दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभागक श्रमिकों कल्याण योजनाओं जानकारी ज्यादा है ज्यादा लोगन तक पुजूणक निर्देश दी। उन्हें को की जग जग क्षेत्र में शिविर लगाबेर पात्र श्रमिकों के ये योजनाओं का लाभ दी जाओ। मुख्यमंत्री की श्रमिकों काम करनी जागन पास से जरूरी सामग्री उपलब्ध करूँ व्यवस्था करी जाओ तब भी उनके सुविधा मिल सकेली। उन्हें श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें नांतिनक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर जोर दें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करहलो। उच्च न्यायालय अब 29 जून के खुलल। उच्च न्यायालय कैलेंडर के अनुसार हाईकोर्ट में 22 जून है 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित रोल और 26 जून के मुहर्रमक अवकाश रोल। भारत निर्वाचन आयोगक उपनिदेशक अपूर्व कुमार सिंह नेतृत्व में 3 सदस्यीय दलल रुद्रप्रयाग जिला दौर कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक निर्वाचन साक्षरता गतिविधियों जायजा ले। यह के अंतर्गत आयोगक दलल अधिकारियों जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा धे मिलबेर SIR अभियानक प्रगति गणना प्रपत्रों विवरण एवं संग्रहण डिजिटलाइजेशन कार्य और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए समीक्षा करी। अधिकारियों को की जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र का आधारशिला होनी। विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों दे निर्वाचन आयोगक अधिकारी सोशल मीडिया मंचों के फॉलो करनक और ECI नेट ऐप डाउनलोड करनक ले अपील करी। भारत निर्वाचन आयोगक निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों डिजिटलाइजेशन एवं निर्वाचन नियमावली है संबंधित कार्यों की प्रगति के लिए बैठक भई। बैठक में राज्यक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडेल को की सभ्य गणना प्रपत्रों शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन बखत पर त्रुटि रहित पुर करी जाल। उन्हें को की BLO ऐपक माध्यम प्राप्त आवेदनों के निस्तारण प्राथमिकता करणक दगण डुप्लीकेट व मृत मतदाताओं नामक नियमानुसार हटाई जाओ। डॉक्टर जोगदंडेल को की मतदाता सूची शुद्धता निर्वाचन प्रक्रिया रीढ़ छू या मैं कै प्रकारक ले लापरवाही नहीं हो चें।
1: या वो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कहीं पर नेटवर्क शैडो एरिया होने के कारण थोड़ा प्रगति कम आ सकता है, बट अभी तक उस पर क्या उपाय योजना है क्या कार्य योजना है वो अगर उन्होंने तैयार कर लिया होगा तो उसमें आगामी 2-4 दिनों प्रगति आ सकती है। 7 जुलाई तक पूरा होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर SDMs एंड AERs रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू के आधार पर कोई अगर उपाय योजना करनी है कार्य योजना बनानी है स्ट्रेटेजी चेंज करना है वो कार्यवाही भी कर सकते हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रदेश भरक सभ्य कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन करी जल। यह कदगर नागरिकों के योग प्रति जागरूक करण लीजी विशेष गतिविधियां संचालित करी जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम सिद्ध प्रसारण ले कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर करी जल। यो शिविर में स्थानीय नागरिकों महिलाओं युवाओं विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के योगाभ्यास कराई जल और योग धे जुड़ी हुण वाल फैद के जानकारी ले उनन के दी जल। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड राज्य कार्यालय सभ्य जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमों के अपन अपन क्षेत्र में योग शिविर आयोजित करण व ज्यादा है ज्यादा नागरिकों के सहभागिता सुनिश्चित करण पर के लिए निर्देश दी। कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार आपु लोग यो बखत आकाशवाणी देहरादून बटिक सुनो छा। उत्तराखंड पुलिस के वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करनक लीजी केंद्र सरकार राज्य पुलिसक लीजी संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार है सम्मानित करो। यह प्रतिष्ठित सम्मान देश भर में पासपोर्ट आवेदनों पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शनक आधार पर दीगो। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉ. S.J. उत्तराखंड पुलिस के यो सम्मान दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील यो उपलब्धि लीजी उत्तराखंड पुलिस के बधाई देते हुए कहो कि नागरिकों के पारदर्शी एवं बखत पर सेवा उपलब्ध करूण स्वीकारक सर्वोच्च प्राथमिकता छू और यह उपलब्धि उई दिशा में करी जा रही प्रयासों की सफलता का प्रतीक छू। उन्हें आशा व्यक्त करी कि भविष्य माले उत्तराखंड पुलिस नागरिकों की सेवा में एससी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करल राज्य गौरव बढ़ाते रोली। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठल बताए कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया के बखत पर पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनक लीजिए सतत प्रयासों परिणाम छू। ऊर्णवल कावड़ मेले दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार पुलिस तैयारियां तेज कर रही। यही क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादवल राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न अंडरपास फ्लाईओवर व दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हैं हरिद्वार ऊर्णवल बाटन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं जायजा ले। यो बखत पर पुलिस

0: तेज कर हली। यो क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंहक निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादवल राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न अंडरपास फ्लाईओवर व दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हैं हरिद्वार ऊन वाल बाटनक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं जायजा ले। यो बखत पर पुलिस अधीक्षक यातायात बताए कि कावड़ मेल है पहली सभ्य जरूरी निर्माण और सुधार काम बखत पर पूर कर ली जल जैक वजल श्रद्धालुओं और स्थायी नागरिकों के लिए असुविधा सामना नहीं करण पड़ल। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र सांसद अजय भट्टल आज जमरानी बाद बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा करी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के परियोजना से जुड़ी सभ्य बाधाओं के प्राथमिकता का साथ पुरकरणक ले निर्देश दी। सांसद अजय भट्टल को कि जमरानी बाद उत्तराखंड लिजी लाइफलाइन परियोजना छू यैकपुर हुण पर हल्द्वण लालकुआ क्षेत्र दगड़ तराई भावर के सिंचाई व पेयजल सुविधा मिल ली। श्री भट्टल को कि परियोजना है 14 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हल और बाढ़ नियंत्रण में ले मदद मिल ली। उन्हें प्रभावित परिवारों पुनर्वास मुआवजा वितरण और विस्थापन संबंधी प्रकरणों के लिए जल्द निपटूनक निर्देश दें। सांसदल परियोजना के बखत पर पूर्व करणक लीजिए कार्यदायी संस्थाओं के मैन पावर और मशीनरी बोर्डक ले निर्देश दें।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाला हूं कि यथाशीघ्र वो पैसा अवमुक्त हो जाएगा, तो क्योंकि गंगेटियन क्षेत्र के लिए पूरा पानी यहाँ से जाना है। हम यहीं से वहाँ के जलाशयों में पानी दे रहे हैं, नहरें लगभग हमारी तैयार हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ हो रही है जो करीब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय केसी पन जी हमारे वरिष्ठतम लोग रहे हैं देश के, आप जानते हैं, माननीय कोश्यारी जी, सभी लोग इसमें लगे रहे। उनका आशीर्वाद रहा कि हमको ये मामला उठाने का मौका मिला और तब से लेकर लगातार हम इसी प्रकार की मीटिंग्स और जो इसकी रुकावटें थी उन रुकावटों को दूर करना, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसकी भरपाई करें जो इतने लंबे सालों तक नहीं हो सकता है।
0: भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून प्रदेशक 8 जिलों का कुछ हिस्सों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है तेज हाव चलनक येलो अलर्ट जारी करो। मौसम विज्ञान केंद्र आज देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी बक्सर पिथौरागढ़ और नैनीताल में कै चाल चमकण ढानबुई तेज बरखा येलो अलर्ट ले जारी करो। येक दगड़ हिमालयी क्षेत्र में ह्यू ले पड़ सकूं मौसम के देखते हुए विभागल यात्रियों तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के विशेष सतर्कता बरतूणक सलाह दे रखी। मौसम विभागल यात्रियों के पहली मौसम जानकारी प्राप्त करनक ले अपील करी छू। अंत में मुख्य समाचार एक बारी आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाओं लाभार्थियों के सहायता राशि बांटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भरक सभ्य कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन करी जल। पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी काम करनक लीजिए केंद्र सरकार उत्तराखंड पुलिस के सम्मानित करो। और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र सांसद अजय भट्टल जमरानी बाद परियोजना का निरीक्षण करो। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों की अंक यही समाप्त हूं। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए अब सुनते हैं। नागमणि फिल्म से आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की।

नागमणि फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं विपिन सचदेवा की आवाज़ में सनम बेवफा फिल्म से। गीत है सावन कुमार का और संगीत है महेश किशोर का।

सुरेश वाडकर की आवाज़ में प्रहार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। मंगेश कुलकर्णी के लिखे गीत को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं दीवाना फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं समीर और आवाज़ें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक कव्वाली के साथ। फनकार हैं नुसरत फतेह अली खान और मुजाहिद मुबारक अली खान।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में इब्राहिम अश्क की रचना भी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली पेशकश शमसा कवल की आवाज़ में।

अली हैदर के गाए इसी गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। सब कुछ अधिक विस्तार के साथ शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। शुरुआत मुख्य समाचार से। चेन्नई में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में कल मैनचेस्टर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 5 पदक जीते। फीफा विश्व कप के 10वें दिन 3 मैच खेले जाएंगे। कल अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ऑकलैंड में FIH नेशंस कप में भारत ने चिली को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताब के लिए कल मेजबान न्यूजीलैंड से मुकाबला। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में अश्मिता चालिया की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त। शुरुआत क्रिकेट के साथ। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को अब से कुछ देर पहले 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत

0: जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल 86 गेंद में 110 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 79 रन की धुआंधार पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने 102 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उधर हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय ओडीआई क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। वह अफगानिस्तान श्रृंखला से पहले लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। उधर मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे विराट कोहली के बारे में फैसला दोबारा उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन अब उसके सामने एक कड़ी और बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट।
1: पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन और दूसरे मैच में कमजोर नीदरलैंड्स को 95 रनों से करारी शिकस्त देने वाली भारतीय महिलाओं के लिए इस विश्व कप की सबसे कठिन चुनौती दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से पार पाना है। ऐसे में इस खतरनाक टीम के सामने जीत के लिए टीम को हर हाल में न सिर्फ अपनी लय को कायम रखना होगा बल्कि मनोबल को भी ऊंचा बनाए रखना होगा। ये मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर भारत की बल्लेबाजी को कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की स्मृति मंधाना की काबिलियत और कप्तान हरमनप्रीत के अनुभव के साथ शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की आक्रामक बल्लेबाजी अहम होगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ट और मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। पहले दो मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय गेंदबाजों को मैनचेस्टर की स्पिन फ्रेंडली पिच पर धार बनाए रखनी होगी। ऐसे में अनुभवी दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी एक बार फिर टीम इंडिया की मजबूत कड़ी साबित हो सकती हैं। शेफाली वर्मा भी स्पिनर के रोल में फिर से फिट हो सकती हैं। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि टीम किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है। भारत के पास अच्छी तेज और स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। दूसरी पिछली बार T20 विश्व कप फाइनल खेल चुकी विरोधी टीम के पास दबाव से निपटने का काफी अच्छा अनुभव है। दोनों टीमों के पास अच्छे हरफनमौला हैं और ये इस ग्रुप का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। 5 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम अभी तक T20 विश्व कप नहीं जीत सकी है। इस मैच में जीत भारतीय टीम को न सिर्फ ग्रुप में और बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मानसिक मजबूती भी देगी। कोई शक नहीं है कि जीत के लिए दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 5 पदक जीते। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: शूटिंग में भारत हमेशा से अच्छा करता रहा है और आगे भी भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। इसका संकेत ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिल रहा है। जूनियर निशानेबाजों का लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। उधर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रोहित कानियान ने सटीक निशाने साधते हुए सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन विमेन इवेंट में प्राची गायकवाड़ ने 354.7 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने टीम इवेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। रोहित कन्यान, वेदांत नितिन वाघमारे और हितेश श्रीनिवासन की टिकड़ी ने मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन टीम इवेंट में भारत को एक और कांस्य पदक समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी की टिकड़ी ने दिलाया। चैंपियनशिप में भारत अब तक कुल 8 पदक जीतकर सबसे आगे है। इससे पहले सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता जबकि हिमांशी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने मिलकर कुल 1700 का स्कोर बनाया और स्टैंडिंग में टॉप पर रही और टीम का खिताब जीता। इन पदकों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय टीम ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स दोनों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ चैंपियनशिप में

0: मजबूत शुरुआत की है वैष्णवी स्पोर्ट्स कैंप।
1: और अब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के 10वें दिन आज 3 अहम मैच खेले जाएंगे। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच महत्वपूर्ण मैच होगा। यह मैच कांटे का रहने की उम्मीद है। एक अन्य मैच में जर्मनी की टीम आइवरी कोस्ट का सामना करेगी। तीसरा मैच इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप बी में मेजबान अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली। इसी ग्रुप में दिग्गज ब्राजील की टीम ने हैती पर एकतरफा जीत हासिल की। कैसे रहे ये मुकाबले, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

0: ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली। इसी ग्रुप में दिग्गज ब्राजील की टीम ने हैती पर एकतरफा जीत हासिल की। कैसे रहे ये मुकाबले, जानते इस रिपोर्ट के जरिए।
1: सह मेजबान अमेरिका ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ एक तरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी बल्कि शान से राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली टूर्नामेंट की दूसरी टीम बन गई। सिएटल स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर कैमरन बर्गेस फोलरिन बोलागुन के शॉट का बचाव करते हुए अपना ही पोस्ट में गेंद डाल बैठे और उनकी टीम 1-0 से पिछड़ गई। अमेरिका ने पहले का अंत होने से ठीक पहले उस समय अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया जब मैच के 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट ने शानदार शॉट लगाया। हालांकि उनका ये शॉट गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका लेकिन सर्जिनो की नाकाम कोशिश को कैमरन बर्गेस ने बेहतरीन हेडर मारते हुए सफलतापूर्वक गोल में तब्दील कर दिया और अमेरिका को मैच में 2-0 की बढ़त दिला दी। ये बढ़त अंत तक कायम रही और अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 में लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली। उधर फॉक्सबोरो में खांचे के मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बोस्टन स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही मोरक्को ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। मोरक्को की तरफ से मुकाबले का एकमात्र गोल इस्माइल सबारी ने मैच शुरू होने के मात्र 71 सेकंड बाद ही कर दिया।
2: What Moroccan magic he is bringing to this World Cup. Morocco have their first win of this 2026 World Cup.
1: मैच के शुरुआत में ही बढ़त हासिल करने के बाद टीम ने पूरे मुकाबले में खेल की गति को अपने नियंत्रण में रखा। पहले गोल के बाद भी मोरक्को की टीम ने कई मौके बनाए लेकिन दूसरा गोल नहीं कर सकी। उधर फिलाडेल्फिया में बेहद मजबूत ब्राजील ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराया। इस जीत के नायक मैथ्यूस कुन्हा रहे जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। इस जीत के बाद गोल अंतर के आधार पर ब्राजील ने ग्रुप सी में पहला स्थान हासिल कर लिया। मैथ्यूस कुन्हा ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत को बेहद खास बनाया। उनके साथ विनिसियस जूनियर और राफिन्हा का प्रदर्शन भी दमदार रहा। ब्राजील के लिए मैच का पहला गोल 23वें मिनट में आया जब हेंस डेल क्रोइक्स का क्लियरेंस शॉट कुन्हा से लगकर गोल पोस्ट में चला गया। पहले हाफ के अंत से 9 मिनट पहले कुन्हा ने ब्राजील की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में विनिसियस जूनियर ने ब्राजील के लिए मैच का तीसरा गोल किया। लगातार दूसरी हार के साथ ही हैती की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। कैलिफोर्निया में पराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्कियों को 1-0 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में इस जीत के साथ पराग्वे ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। वहीं हार के साथ ही तुर्की का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। मैच का एकमात्र गोल मटियास गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल भी है। गैलार्जा ने करीब 25 मीटर की दूरी से जोरदार शॉट लगाया और तुर्की के गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा।
2: Front. It's the fastest goal of the tournament. Turkey are heading home at the end of the group stage.
1: पैराग्वे को हाफ टाइम से ठीक पहले बड़ा झटका लगा जब मिडफील्डर मिगुएल एल्मिरोन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। पैराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें फीफा के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली। इसके चलते पैराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद पैराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया। गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्की को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में FIH नेशंस कप हॉकी में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल कल खेला जाएगा। सुनते हैं अलका की ये रिपोर्ट।
3: अगले साल प्रो लीग में वापस

0: सी के लिए जद्दोजहद कर रही भारतीय शेरनियों ने नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए अंतिम चार के मैच में विरोधी चिली की टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने चिली पर शुरू से ही ताबड़तोड़ हमले किए। हमला इतना तीखा और सटीक था कि चिली की टीम कभी चिल कर ही नहीं सकी। भारत की जीत की नायिका नवनीत कौर और दीपिका रही। नवनीत कौर ने मैच के छठे और तेरहवें मिनट में गोल दाग कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दीपिका ने 14वें और 18वें मिनट में लगातार दो गोल करके भारतीय बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक ही चिली की टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन भारतीय लड़कियों ने रहम नहीं बरती और दूसरे हाफ में भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे।
1: और उधर रोटरडम में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के डच चरण का समापन मेजबान नीदरलैंड्स के साथ मैच खेलकर करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत जूनियर पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने आज चीन के जूनी में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हर्षित दामोदरन, निषाद नरवाने, SK नभी गली, अक्षत बजाज और मोहम्मद जैद अंसारी की युवा भारतीय टीम ने महाद्वीप की कुछ मजबूत टीमों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। चीन के शाओजिंग में दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके अलावा भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मलेशिया के सारावाक में चल रही तीसरी एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। और हम आपको यह भी बताएं कि अश्मिता चालिया की हार के साथ ही मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज अश्मिता को दक्षिण कोरिया की पार्क गाय युन ने 17-21, 9-21 से हराया। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। ओलंपिक में दो रजत पदक जीतने वाले नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो पदक जीतने के लिए काफी नहीं था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पद

0: कार्यभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाश

0: समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में

0: अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace,

कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में आदमी फिल्म से। नगमा निगार थे शकील बदायूनी। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में यास्मिन फिल्म से। बोल हैं जानिसार अख्तर के और संगीत दिया है सी रामचंद्रानी।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में उजाला फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया गीत तुमसा नहीं देखा फिल्म से। नगमा निगार है मजरूह सुल्तानपुरी और मौसिकार हैं ओपी नैयर।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

ढूंढ चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे

0: से को कसम से, कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ तुसे हाँ।
1: तुमसा नहीं देखा फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से
2: इंद्रधनुष, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश,

ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये

0: सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक

0: यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन तिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ वे दर्दी क्यों तड़पाए जिए राम रब जाए के, ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट।

0: और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहाँ आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade

0: artist of All India Radio when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: डॉक्टर विवेक करमहे अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: Dr. Vivek Karmahe is commencing his recital with Rag Shri. The Vilambit composition is set to Tilwara Tal with the lyrics Wari Jaun Re Tumpe. The Drut composition is in Teen Tal with the lyrics Chalo Re Mai Ram Siya Darshan. Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ

0: से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियाँ, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: representatives of the center. Addressing the public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Manjhi. He said the center's Purvodaya mission aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में